वक्त आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो जन धर्म शाला। तो श्रोताओं, सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के

बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो शशि के

92.2 MHz पर ए तोहा सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तोहा सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्या।

91.2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही, तुहां सारे ई बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पंदी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के दादा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो हैं।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

धर्मशाला और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

101.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडी दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

खुश होता हूँ आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो दो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपनेपन की।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रूम से चटनी चढ़ाया।
4: चटाई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना।
0: मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: क्या देना? नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
14: मैं तो बुरी।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोताओ, इस समय आप जुड़ चुके हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। आज का गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम लेकर हाजिर हुई है आपकी दोस्त सुमन। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारी ओर से प्यार भरे नमस्ते और सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। श्रोताओ, हम पहुँच चुके हैं रेडियो गुंजन के स्टूडियो में लेकर ढेर सारी जानकारियाँ, और जानकारियों के साथ साथ लेकर आए हैं प्यारे प्यारे गीत। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं श्रोताओं, इस कार्यक्रम के इस प्यारे से पहले गीत के साथ। तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कहते हैं कि उगता सूरज आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर आए, महादेव की कृपा से हर दिन खुशियों से भर जाए। दुआ है आज का दिन आपके लिए सफलता, सुकून और मुस्कान लेकर आए। जी हाँ श्रोताओ, हम तो हर दिन यही दुआ मांगते हैं कि हमारे दोस्त हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने कामकाज में व्यस्त रहे, क्योंकि श्रोता जब हमारा शरीर ठीक रहता है तो कहीं ना कहीं काम करने को भी मन करता है। और हमारे बुज़ुर्ग भी यही कहते हैं कि हमेशा ऊपर वाले से सही तंदुरुस्ती मांगनी चाहिए। जब हमारा शरीर सही होता है तो हर काम को करने को मन करता है, हर जगह जाने को, घूमने फिरने, मिलने मिलाने को मन करता है। और शरीर ही ठीक ना हो तो कुछ भी काम हमारे सही से नहीं होते हैं। तो श्रोता, हमारी तो हर दिन यही दुआ रहती है कि हमारे दोस्तों के जीवन में ढेर सारा सुकून, सुख समृद्धि ऊपर वाला दे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोतो, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में और बात करते हैं आज के मौसम की। खैर श्रोतो, जब हम आपसे मिलने आ रहे थे तब तो अच्छी खासी धूप थी। आजकल के मौसम का वैसे पता नहीं चलता है, पल में धूप और पल में बारिश की बौछारें जो है शुरू हो जाती हैं। मौसम जो बरसात का चला है और बरसात के मौसम का भरोसा भी नहीं होता है कि कब बारिश लग जाए। इसलिए जब भी घर से बाहर निकले अपना प्रबंध थोड़ा सा करके निकले, छाता ज़रूर आजकल के समय में साथ रखें। हम जो ईस्ट लोग हैं वो तो अपने साथ छाता रखते हैं, अगर कॉलेज गोइंग बच्चों की बात की जाए तो वो अपने साथ छाता ले जाना अच्छा नहीं समझते हैं, या उन्हें भार लगता है, या शायद थोड़ा सा उनकी जो पर्सनैलिटी है वो ख़राब होती है। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जब हम उनसे ये कहते हैं कि छाता लेकर जाओ बीमार हो जाओगे, तो वो मना करते हैं, नहीं मौसम ठीक है, और फिर जब गीले होते हैं तो पड़ते हैं बीमार। तो श्रोताओं, थोड़ा सा रखना है आप सभी को इस मौसम में अपना अपना ध्यान और ख्याल। इसी ख्याल के साथ आज के वेदर की बात की जाए तो आज का मौसम है 27 डिग्री सेल्सियस और मौसम में ह्यूमिडिटी बनी हुई है 81%। और साथ ही साथ श्रोताओ, बरसात का तो हमने आनंद लेना है, आनंद के साथ साथ हमें सभी को रखना है अपना और अपनों का ख्याल, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखेंगे तभी तो अपनों का ख्याल रख पाएंगे ना, और जब हम ही सही नहीं होंगे तो अपनों का ख्याल रखना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किलों भरा हो जाता है। फिलहाल श्रोताओ, इस समय रखना है हमें ये, यानी आपकी दोस्त को आपका ध्यान और आप तक पहुंचाना है कार्यक्रम का ये गीत। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत को।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: Yeah!

0: तो इसी गीत के साथ कार्यक्रम में समय हो गया है 9:20, तो आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण सितंबर माह में होगा आयोजित। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा आरंभ। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान काउंसिल के सदस्य के रूप में चयन। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में किसानों बागवानों की सुविधा के लिए घर द्वार पर मार्केट यार्ड कर रही स्थापित। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियां शुरू। आज भाजपा के 20 प्रकोष्ठों की शिमला में अहम बैठक। और विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पहली बार BSNL स्थापित कर रहा अस्थायी टावर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में जनगणना 2027 का दूसरा चरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 1 से 5 अक्टूबर तक पुनरीक्षण चरण होगा, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों को ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा मिलेगी, जिसमें 40 प्रश्नों के तहत सूचना एकत्रित की जाएगी। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार को देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान काउंसिल का सदस्य निर्वाचित किया गया है। इस पद के लिए आयोजित चुनावी प्रक्रिया के तहत 13 अगस्त को डॉक्टर सिकंदर कुमार को काउंसिल का सदस्य चुना गया। ये काउंसिल देश में खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन, सप्लाई चेन और खाद्य सुरक्षा मानकों के निर्धारण में सर्वोच्च संस्था है। सिकंदर कुमार के निर्वाचन से प्रदेश में फल व सब्जियों के लिए उचित प्रसंस्करण और कोल्ड चेन के नेटवर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद की जा रही है। बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिला के पूह उपमंडल में कल जंगी ग्राम पंचायत में सब्जी मंडी का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने इस क्षेत्र में कोल्ड स्टोर व HPMC के पैकिंग व ग्रेडिंग हाउस को स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में जगह जगह मार्केट यार्ड स्थापित कर रही है, जिससे किसानों व बागवानों को स्थानीय स्तर पर ही उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दल संगठनात्मक स्तर पर रणनीतियां बनाने और तैयारियों में जुट गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय दीपकमल शिमला में प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकोष्ठों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के 20 प्रमुख प्रकोष्ठों की आगामी चुनावों में भूमिका और रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार 20 अगस्त को शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में कांग्रेस पदाधिकारियों, जिला प्रभारियों और जिला कांग्रेस अध्यक्षों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस महासचिव विनोद जिंटा ने बताया कि बैठक के लिए प्रत्येक जिला अध्यक्षों के अब तक के कामकाज का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। सिरमौर जिला में पुलिस बल को सशक्त बनाने और स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए लंबे समय के बाद एक रिजर्व पुलिस बल मिला है। धौलाकुआं स्थित IRBN की 6 बटालियन से 24 जवानों की रिजर्व टुकड़ी जिला पुलिस को सौंपी गई है। जिला में अब तक रिजर्व बल नहीं होने के कारण कैदियों की गार्ड के लिए कई बार पुलिस कार्यालयों और थानों से कर्मचारियों को ड्यूटी पर भेजना पड़ता था। स्टाफ की कमी से जूझ रहे थानों और चौकियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता था। नई रिजर्व पुलिस टुकड़ी मिलने के बाद नियमित पुलिसिंग प्रभावित किए बिना कैदियों की सुरक्षा संबंधी ड्यूटियों का बेहतर प्रबंधन हो सकेगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक चलने वाली चंबा जिला की विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा इस वर्ष 4 सितंबर को 19 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। प्रशासन ने यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल के अनुसार चंबा भरमौर NH सहित मणिमहेश यात्रा के पैदल ट्रैक को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा की बुकिंग 25 अगस्त से शुरू हो जाएगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए इस दुर्गम मार्ग पर पहली बार BSNL द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए अस्थाई टावर स्थापित किए जा रहे हैं। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार दुर्गम यात्रा मार्ग पर बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी। BSNL ने धनचो और हरसर में 4G नेटवर्क उपलब्ध करवाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इस तरह की सुविधा पहली बार BSNL द्वारा मणिमहेश यात्रा में उपलब्ध करवाई जा रही है। BSNL कांगड़ा चंबा के वरिष्ठ महाप्रबंधक विपिन कुमार मौर्य के मुताबिक धनचो में 4G टावर का काम पूरा हो चुका है, इसे ऑन एयर कर दिया गया है। वहीं हरसर में भी टावर स्थापित करने का काम जारी है। इससे श्रद्धालु अपने परिजनों से संपर्क में रह सकेंगे और आपदा या आपात स्थिति में राहत बचाव कार्यों के लिए संचार व्यवस्था भी मजबूत होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शुरू हुई नई अकादमिक व्यवस्था को शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने ERP आधारित छात्र पोर्टल तैयार किया है। इलेक्टिव और चॉइस आधारित पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के विषय चयन का रिकॉर्ड इसी ऑनलाइन व्यवस्था से तैयार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि पोर्टल में विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों व पाठ्यक्रमों के चयन का विकल्प दिया गया है। इसका रिकॉर्ड परीक्षा व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। प्रदेश में मानसून के एक बार फिर सक्रिय होने की संभावना बनी है। मौसम विभाग ने आज से अगले 48 घंटों के लिए कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार आज 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर के कई स्थानों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि 22 अगस्त तक निचले और मध्यम पहाड़ी क्षेत्रों में मानसून की वर्षा का क्रम जारी रहेगा। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई घोषणा को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, पेंशनरों को 15-35%, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसी माह 20,000 एरियर। पंजाब केसरी के शब्द है, जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 4,000 पद, 100 CBSE स्कूल खुलेंगे। दिव्य हिमाचल का शीर्षक है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी पेंशनरों का बकाया भुगतान भी इसी माह 281 करोड़ खर्च करेगी सरकार। दैनिक जागरण ने खबर दी है, हिमाचल में सप्ताहांत पर बढ़ा ट्रैफिक का दबाव, घंटों तक जाम में फंसे लोग। मौसम पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, प्रदेश में अब तक 18% कम बारिश दर्ज, आज 4 जिलों में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण सितंबर माह में होगा आयोजित। आज से 31 अगस्त तक नागरिकों के लिए ऑनलाइन स्वगणना की सुविधा आरंभ। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार का राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता व प्रबंधन संस्थान काउंसिल के सदस्य के रूप में चयन। राज्य सरकार जनजातीय क्षेत्रों में किसानों बागवानों की सुविधा के लिए घर द्वार पर मार्केट यार्ड कर रही स्थापित। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारियां शुरू, आज भाजपा के 20 प्रकोष्ठों की शिमला में अहम बैठक। और विश्व विख्यात मणिमहेश यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत पहली बार BSNL स्थापित कर रहा अस्थायी टावर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

श्रोताओ, इसी गूंज के साथ कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की यानी 17 अगस्त की। 17 अगस्त को ढेर सारी घटनाएं हमारे देश में घटी हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा उनकी ओर रुख करें और 1909 की ओर हम जाएं तो महान भारतीय क्रांतिकारी मदनलाल ढींगरा को लंदन के पेटोनविली जेल से फांसी दी गई थी। 1945 में इंडोनेशिया के नीदरलैंड से स्वतंत्रता मिली थी और वे एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। श्रोताओं, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा तय करने वाले रेड किल्फ लाइन को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया था। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ और भी हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंज।

श्रोता, इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूं इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1988 की। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक और अमेरिका राजदूत की एक विमान दुर्घटना में आज ही के दिन मृत्यु भी हुई थी। और साथ ही साथ 2008 में अमेरिकी तैराक माइकल फेल्पस ने विजिक ओलंपिक खेल में तैराकी के 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। तो श्रोताओ, थोड़ी सी हम बात करेंगे आज के दिन जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में और जिनका निधन हुआ था उनके बारे में। 1916 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार और उपन्यासकार अमृतलाल नागर का जन्म आज के दिन हुआ था। और साथ ही साथ 1932 में प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार B.S. नायपाल का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। और 2020 की बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक पंडित जसराज का निधन आज के दिन हुआ था। और इनके साथ साथ अब भारत के महान क्रांतिकारी और ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक पुलिन बिहारी दास का निधन भी आज ही के दिन हुआ था। तो श्रोताओ, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ आपका करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो थोड़ी सी हम 17 अगस्त पर अमर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की शहादत का दिन है और उन्हें याद करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 17 अगस्त का दिन जो है ख़ास महत्व रखता है। ये वही दिन है जब महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनकी शहादत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन गौरवशाली अध्याय में शामिल है जो आने वाली पीढ़ियों को देश के लिए त्याग और साहस की प्रेरणा देते हैं। इसके साथ साथ श्रोताओ, मदन लाल ढींगरा के अगर जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म जो है 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए जहां उनका संपर्क भारतीय राष्ट्रवादी विचारों से हुआ। उस समय विदेश में रहकर भी भारतीय युवा ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। ढींगरा भी इस विचारधारा से प्रभावित हुए और भारत की गुलामी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना। तो श्रोताओ, कार्यक्रम में हम और भी जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें भी साझा करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा देते हैं कार्यक्रम में विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो श्रोताओ, जानकारियों का पिटारा बहुत ज़्यादा हमारे पास है, तो आइए थोड़ा सा और पिटारा अपना खोलते हैं और देखते हैं अगली जानकारी किसकी है। जी हाँ श्रोताओ, हिंदी लेखक अमृतलाल नागर की बात करें तो उनका जन्म 17 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा में गोकुलपुरा के एक गुजराती परिवार में हुआ था और उनका जो प्रसिद्ध कवित्री अमृत प्रीतम से हुआ था उनका आशय, और उनका जन्म 31 अगस्त 1919 को गुजरावाल पाकिस्तान में हुआ था। अमृतलाल की मुख्य रचनाओं की बात करें तो प्रसिद्ध उपन्यास बूंद और समंदर, अमृत और विष, मानस का हंस, सुहाग के नूपुर उनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं और ये जो है काफ़ी विख्यात रहे हैं। और भी जानकारियां श्रोताओ हम इनसे जुड़ी हुई आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत, तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से हम वापस आते हैं। गीत से पहले हम अमृतलाल नागर की बात कर रहे थे श्रोताओं। तो ये जो है 1916 से 23 फरवरी 1990 तक 20वीं सदी के प्रसिद्ध और सम्मानित हिंदी उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार रहे हैं। उन्हें हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले मुख्य रचनाकार माना जाता है। और उनके जो उपन्यास है उनकी तो हमने आपके साथ बात कर ली। उनकी कहानियाँ संग्रह की बात करें तो बाप रे बाप, छमाछम, एक दिल हज़ार दास्तां, इसके साथ साथ बहुत सारे नाटक उनके जो हैं हमारे सामने आए हैं, उसमें चुकता ईसा, बांकी की डायरी इत्यादि प्रमुख हैं। और अमृतलाल नागर को विशेष रचनाकार के रूप में माना जाता है। तो श्रोताओं, ये थे हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ साथ थोड़ा सा फिर से कार्यक्रम में आपका करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारी जानकारियों का पिटारा बंद ही रह जाएगा। तो थोड़ा सा और जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं और थोड़ा सा फिल्म जगत की ओर रुख करते हैं। श्रोताओ, 17 अगस्त को कई जाने माने भारतीय अभिनेता और अभिनेत्रियों का जन्म आज के दिन हुआ था। मुख्य हस्तियों में सचिन पिंगलावाकर और शरद सक्सेना, सुप्रिया पिंगलावाकर, दिशा विकाणी, श्रद्धा आर्य और निधि अग्रवाल शामिल है। 17 अगस्त में सचिन पिंगलावाकर की बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्देशक और गायक, जिन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में काम किया था। और उनके साथ साथ शरद सक्सेना की बात करें तो उनका जन्म 1950 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के दिग्गज और वरिष्ठ अभिनेता के रूप में हुआ था। एस शंकर की बात करें तो उनका जन्म 1963 में भारतीय सिनेमा के मशहूर फिल्म निर्देशक के रूप में हुआ था। उनके साथ साथ मिशाल रहेजा, उनका जन्म 17 अगस्त यानी आज के दिन 1982 में लोकप्रिय टेलीविजन अभिनेता के रूप में हुआ था। और भी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुकते हैं और आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन कार्यक्रम के इस अगले प्यारे से गीत के साथ। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर श्रोता इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आज ही के दिन जन्मे मुख्य अभिनेत्रियों की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं और सुप्रिया पिंगला गावकर की बात करें तो उनका जन्म आज ही के दिन 1967 में हिंदी और मराठी धारावाहिकों व फिल्म की जानी मानी अभिनेत्री के रूप में हुआ था। अब दिशा भंकानी की बात करें तो उनका जन्म 1978 में लोकप्रिय टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दयावेन का किरदार निभाने वाली प्रसिद्ध अभिनेत्री के रूप में हुआ था। और साथ ही साथ श्रोता थोड़ी सी हम बात करें तारक मेहता की कि कौन तारक मेहता नहीं देखता है और उसमें दयावेन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को कौन नहीं जानता है, सबको हंसाती हैं और बढ़िया किरदार उनका रहा है। इसके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा आर्य के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 1987 में जानी मानी भारतीय टेलीविजन और फिल्म अभिनेत्री के रूप में हुआ था। निधि अग्रवाल 1993 में बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री व डांसर रही हैं। बरखा मदान इनका जन्म 1974 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री और मॉडल के रूप में हुआ था। अब बेनाफ दंडा चंद्र जी की बात करें तो इनका जन्म 1987 में लोकप्रिय टीवी अभिनेत्री के रूप में हुआ था। तो ढेर सारी अभिनेत्रियों की श्रोता हमने बात की है, इन्हीं की बातचीत और जानकारियों के साथ फिर से हम रुक करते हैं कि संगीत की ओर और आप तक पहुंचाते हैं दिल का रिश्ता फिल्म का ये प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन।

श्रोताओं, इस समय आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ स्थानीय जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज लोक निर्माण विभाग शिमला में भारतीय रत्न तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का देश के इतिहास में एक विशिष्ट और अमिट स्थान है। वे दूरदर्शी राजनेता और राष्ट्रीय निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान व्यक्तित्व थे। उनके योगदान से भावी पीढ़ियों निरंतर प्रेरणा लेती रहेंगी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वाजपेयी जी सादगी, ओजस्वी वाणी और अद्वितीय राजनीतिक सूझबूझ के कारण सभी राजनीतिक दलों में सम्मानित और देशभर में अत्यंत लोकप्रिय है। राज्यपाल ने कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य, संसदीय परंपरा और सहमति की राजनीति के प्रति वाजपेयी जी अटूट प्रतिबद्धता सार्वजनिक जीवन के लिए एक स्थायी आदर्श भी रहे हैं और राष्ट्र के विकास, सामाजिक कल्याण तथा देश की एकता तथा अखंडता के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय रहा है। तो श्रोताओं, अपनी जानकारियों को देते हैं विराम और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और आज हूँ मैं आपके साथ आपकी दोस्त सुमन लेकर हाजिर हुई हूँ इस प्यारे से कार्यक्रम को। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि जानकारियाँ हमारे पास ढेर सारी हैं, और उन जानकारियों में अब हम बात करेंगे श्रावण अष्टमी के बारे में। श्रोताओं, बात करें तो आप सभी जानते हैं कि श्रावण अष्टमी जो है आजकल चल रही है, जिसे हम सावन अष्टमी के नाम से भी जानते हैं, और हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कहते हैं। इस दिन शिव जी और माता दुर्गा की पूजा की जाती है, और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में इस अवसर पर प्रसिद्ध शक्तिपीठों जैसे माता चिंतपूर्णी मंदिर और कांगड़ा माता में भव्य मेलों का आयोजन किया जाता है, और हमारे आसपास जो चामुंडा मंदिर है उसमें भी खूब सारी रौनक है। और ये मेले जो है 13 अगस्त से 20 अगस्त तक श्रोताओं चलते हैं, और जो है इसमें खूब सारी रौनक होती है। बहुत सारे श्रद्धालु जो है माता के मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं, नतमस्तक होते हैं, और आप सभी ने देखा होगा कि आजकल जो है सड़कों पर भी बहुत सारी भीड़ भाड़ होती है, और ट्रैफिक भी बहुत सारा जाम होता है। न्यूज़पेपर में भी आज बहुत सारी खबरें ऐसी आई हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा जो भक्तजन है माथा टेकने के लिए आ रहे हैं, जिसकी वजह से यातायात भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं और खूब सारे लंगर जो है हमारे शक्तिपीठों पर लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं जी। इन नवरात्रों को हम गुप्त नवरात्रे भी कहते हैं। तो श्रोता, ये नवरात्रे जो है वीरवार को दुर्गा अष्टमी के दिन जो है समाप्त हो जाएंगे, और खूब सारा जो है भक्तिभाव हम सभी के मनों पर होता है। हम सभी अपनी अपनी मनोकामनाओं को लेकर महामाई के दर्शनों के लिए आते हैं, और पूजा अर्चना प्रार्थना विनती करते हैं, और महामाई हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर हमारे मनोकामनाओं को भी पूर्ण करती है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

फ्रीक्वेंसी 91.2 पर शो था। इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आज हम बात कर रहे थे श्रावण अष्टमी के बारे में, यानी सावन के जो आजकल मेले लगे हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। मेलों की रौनक आजकल देखते ही बनती है, और धार्मिक महत्व की बात की जाए तो शिव और शक्ति की पूजा आजकल के दिनों में की जाती है। सावन की अष्टमी भगवान शिव और माता दुर्गा को समर्पित होती है। मान्यता ये है कि इस दिन व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और कल्याणकारी फल भी मिलता है। इस तिथि पर पूजा करने से सुख शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मेले के आयोजन की बात की जाए तो हिमाचल के प्रसिद्ध मेले हिमाचल प्रदेश में श्रावण अष्टमी मेलों का विशेष महत्व रहता है। ऊना जिले में स्थित माता चिंतपूर्णी और अन्य मुख्य देवी मंदिरों में इन दिनों भीड़ लगी रहती है। जैसे हमने बात की कांगड़ा मंदिर की या फिर चामुंडा मंदिर की, यहाँ पर खूब मेलों का आयोजन किया जाता है, खूब भीड़भाड़ होती है और लोग श्रद्धाभाव से माथा टेकते हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ की बात हो रही है तो इस दौरान हिमाचल और पड़ोसी राज्य से लोग माता के दर्शनों के लिए आते हैं। जैसे पंजाब हरियाणा दिल्ली से दूर दूर से लोग माता टेकने के लिए आते हैं और मनचाही मुरादें जो है अपनी महामाई से पूरी भी करवाते हैं, क्योंकि जब श्रद्धा से हम कहीं भी पूजा अर्चना करते हैं तो देवी माँ की कृपा हम सब पर बनी रहती है। तो श्रोता, यदि हमारी जानकारियाँ अपनी जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, तो आप बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए कार्यक्रम में हम आगे बात करते हैं जोड़ू पतरोड़ू की सैर के बारे में। हमारे जो हिमाचली लोग हैं वो तो सभी जानते हैं, क्योंकि वैसे बात की जाए अपने देश की, अपने धर्मशाला की, तो बहुत सारे लोग मिले जुले यहाँ रहते हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और भी तरह तरह के लोग मिले जुले यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का पता नहीं होता है, लेकिन जो हमारे हिमाचली लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो जोड़ू पतरोड़ू की सैर को आज के दिन मनाते हैं। और आज के दिन जो है इसे खाने की भी परंपरा है। और ज़मींदार लोगों की बात की जाए तो ज़मींदार लोग जो है अपनी फसलों से फ्री होकर, यानी कि धान की फसल से फ्री होकर खुशी के रूप में इस त्यौहार को मनाते हैं। और ख़ासकर इस दौरान मॉनसून में अरबी के पत्ते जो होते हैं प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिन्हें स्वास्थ्य और स्थानीय संस्कृति के अनुसार पतरोड़ बनाने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और ये त्यौहार श्रोताओं प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने और पशुओं की देखभाल व अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। और साथ ही साथ लोक परंपराएं भी इस त्यौहार से जुड़ी हुई है। स्थानीय लोक कथाओं में ये माना जाता है कि इस संक्रांति के दिन जो व्यक्ति घी या ऊर्जा से भरपूर पारंपरिक पकवान जैसे पतरोड़ और खीर नहीं खाता है, वो अगले जन्म में घोघा बनता है। घोघा आलस का प्रतीक है, इसलिए लोगों को इस सुस्त मौसम में सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए ये कहानी जोड़ी गई है, ताकि हर कोई पौष्टिक खाना खाए। वैसे भी पौष्टिक खाने की बात की जाए तो पौष्टिक खाना हम सभी के लिए श्रोताओं बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर होता है। और फसल और थोड़ी सी हम बात करें घास की प्रचुरता की, तो इस समय पहाड़ों और मैदानी इलाकों में अरबी के पत्र और नई हरी घास प्रचुर मात्रा में लगती है। और वनस्पति को फसलों और पशुओं की समृद्धि के रूप में देखा जाता है। पारंपरिक रूप से इस दिन कटी हुई फसलें तथा अरबी के पत्तों के पकवान बनाकर सबसे पहले देवताओं और पशुओं को अर्पित किए जाते हैं, जो प्रकृति के लिए आभार जताने का ये प्रतीक होता है। और श्रोता, जब हम पतरोड़ बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपने आस पड़ोस रिश्तेदार और पड़ोसियों को भी खिलाते हैं और अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं कि

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के खास दिन, विशेष दिन की बात करते हैं, विशेष उत्सव की बात करते हैं, नाग पंचमी।

कि आज हम बात कर रहे हैं, इसे उत्सव के रूप में हम मनाते हैं और नागपंचमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव के आभूषण नाग देवता की विधि विधान से पूजा की जाती है, उन पर दूध चढ़ाया जाता है, परिवार की सुख समृद्धि तथा सर्प भय से मुक्ति की कामना भी की जाती है। और आज के दिन श्रोता हम सभी जानते हैं कि नाग मंदिर में खूब सारी रौनक होगी, भक्त जो है माता टेकने के लिए जाते हैं, अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी भगवान नाग देवता से पूजा अर्चना करते हैं। और इसके महत्व और परंपराओं की थोड़ी सी बात की जाए तो भगवान शिव के गले में नाग सुशोभित रहते हैं और सावन मास में नाग पूजा का महत्व बहुत अधिक होता है, ये हम सभी जानते हैं। और इस दिन अनंत वासुकी शेषनाग तक्षक और जैसे महानागों का स्मरण किया जाता है और विधि विधान से इनकी पूजा की जाती है। दीवारों पर गोबर और हल्दी से नाग का चित्र बनाकर दूध जल अक्षत फूल और मिष्ठान से पूजा की जाती है। और हम सभी जानते हैं कि आजकल हम माथा टेकने के लिए अपने आसपास के जितने भी नाग मंदिर हैं वहाँ जाते हैं, अगर नाग मंदिर हमारे घर से दूर है तो शिव मंदिर में जाकर भी हम पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो हमारे नाग मंदिर हमारे आसपास में है, नागनी माता नूरपुर में है, नाग देवता जो है नैनीताल में है और हमारे इंद्रु नाग भी हमारे धर्मशाला में है, वहाँ भी हम माथा टेक सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए जो है पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो श्रोताओं ये तो थी हमारी जानकारी। अपनी जानकारियों के साथ साथ हम कार्यक्रम में आप सभी का करवाते हैं मनोरंजन। कार्यक्रम के इस कार्यक्रम में अगला प्यारा गीत लेते हैं।

श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में फिर से आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के रिज मैदान पर भारत रत्न तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का हिमाचल प्रदेश में विशेष लगाव था। वे मनाली स्थित अपने आवास पर समय समय पर छुट्टियां बिताने आते रहते थे। उन्होंने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी सबको साथ लेकर चलने की राजनीति में विश्वास रखते थे, जो वर्तमान समय में कम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा है कि आज पूरा देश जो है पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा पूर्वक याद कर रहा है और मुख्यमंत्री को उनके देश और प्रदेश के विकास के लिए योगदान को भी याद किया जा रहा है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। जानकारियों के साथ साथ कार्यक्रम में फिर से आप तक पहुँचाते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आओ एक भीगी हुई सी कहानी सुनाता हूँ। जब आसमान से बूंदे नहीं,
1: मुझे तो लड़की बहुत पसंद है।
2: माँ मैं बाद में देख लूंगा, बहुत लेट हो रहा हूँ। आई विल सी यू इन द इवनिंग।

श्रोताओं, इस समय आप जुड़े हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी दोस्त सुमन के साथ। तो कुछ जानकारियां और आपके साथ साझा करते हैं। शाहपुर बस स्टैंड में 46.28 लाख रुपए की लागत से नया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। इसके लिए धनराशि स्वीकृत होने पर शाहपुर के विधायक तथा उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया है। चार्जिंग स्टेशन की स्वीकृति के लिए शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। केवल सिंह पठानिया ने कहा कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, जिसके सुचारू संचालन के लिए शाहपुर बस स्टैंड में ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जाएगा। परिवहन तथा विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ चार्जिंग स्टेशन के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है तथा संबंधित विभाग को जल्द आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी जानकारियाँ। अपनी जानकारियों के साथ हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं। अब चलते चलते आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम प्यारा सा गीत। तो आप सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

श्रोताओ, आज के कार्यक्रम में हमने आपके साथ ढेर सारी बातें और जानकारियाँ साझा की। बहुत सारी बातें थी, जोड़ू पतरोड़ू के सैर की जानकारी थी, नागपंचमी की जानकारी थी, क्योंकि जब श्रोताओं हम कहीं से कोई बात सुनते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ जो है हमें हो जाती हैं और पता भी चलता है। खैर, पतरोड़ू खाने का आज हमारे साथियों को बहुत मज़ा भी आ रहा होगा, स्वादिष्ट चीज़ होती है और पारंपरिक त्यौहार है, इन्हें ज़रूर मनाना चाहिए। और ये जो पतरोड़ों की हम बात कर रहे थे, ये भी सीज़न के बाद ही मिलते हैं। आप अब खा लिए हमने तो अब इसके बाद तो अगले साल ही खाने को मिलेंगे, तो जो तीज त्यौहारों से जुड़े हुए पकवान होते हैं उन्हें भी ज़रूर खाना चाहिए। तो आप सभी को एक बार फिर से नागपंचमी और जोड़ू पतरोड़ू की सैर की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इन्हीं बातों और जानकारियों के साथ साथ आपसे

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देने।
4: गुड्डी किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओ, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो वंचन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: घर सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी।
2: उसका
3: पापा पापा दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है। रहा।
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
3: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
2: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
3: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मतलब बोलने का पावर दिया है। आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हमने पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
6: टीवी देखने बुलाएंगे?
8: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
9: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
8: क्यों?
9: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
10: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
11: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
12: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
13: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
12: मैं तो बुरी।

नमस्कार दोस्तों, 91.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और अब समय है दोस्तों कार्यक्रम हमारी सेहत का। तो दोस्तों ये कार्यक्रम हमारी सहयोगी संस्था ऑर्गन इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, जीवन एक अनमोल उपहार। ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से 91.2 MHz पर।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियाँ लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज के कार्यक्रम में ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हमारे साथ हैं और आज हम एक बार फिर से एक और प्रेरणा से भरी हुई कहानी लेकर आए हैं और वो हमें बहुत ही खास मेहमान से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए डॉक्टर शर्मा से बात करते हैं।
2: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ और मैं आप सभी का ऑर्गन इंडिया की तरफ से फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। दोस्तों, ये चीजें हम ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी कई सालों से सुनते आ रहे हैं कि जब भी किसी घर की महिला को किसी अंग की जरूरत होती है, किडनी या लिवर जैसे अंग की जरूरत होती है, तो जो घर के मेल मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही हिचकिचाते हैं उन्हें डोनेट करने में, और जब किसी मेल मेंबर को जरूरत होती है तो फीमेल्स नहीं हिचकिचाती है, मतलब घर की महिलाएं जो होती है वो हमेशा रेडी रहती है अपने अंगदान करने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारी कहानी है वो इसी चीज पर बेस्ड है और आज के जो हमारे मेहमान है वो इस मिथ को बिल्कुल तोड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी डॉटर को बचाने के लिए अपनी एक किडनी अपनी डॉटर को डोनेट करी थी। चलिए तो हम आज इनसे बात करते हैं। इनका नाम है संजीव छाबरा, ये गुड़गांव के रहने वाले हैं। तो हम इनसे बात करके इनकी कहानी को जानते हैं और पता लगाते हैं कैसे ये चीजें उनके लिए टफ बनी, कैसे उन्होंने डिसाइड किया, कितनी मुश्किल आई, कितना आसान रहा ये सफर, एंड अब चीजें कैसी हैं। तो संजीव जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में।
3: गुड इवनिंग
2: संजीव जी। जैसा कि मैंने श्रोताओं को आपके इंट्रोडक्शन में बताया कि आपने अपनी यंगर डॉटर को अपनी किडनी डोनेट करी, तो आप थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को इस के बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि कैसे ये प्रॉब्लम चालू हुई आपकी यंगर डॉटर में और कितने साल की थी वो जब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कितने साल तक उन्हें सफर करना पड़ा एंड उसके बाद ये किडनी का ऑपरेशन हुआ, आपने कितनी मेहनत करने का फैसला।
3: तो अगर मैं गेस करता हूँ तो शायद ये 10-11 साल की थी जब उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, लेकिन कोई डायग्नोज नहीं कर पाया। हम दिल्ली के टॉप चाइल्ड किडनी स्पेशलिस्ट के पास गए थे कुछ के पास, लेकिन शायद दो के पास नहीं गए जिन्होंने अल्टीमेटली 2000 से प्रॉब्लम बंद हो गई थी। जब डिटेक्ट हुई तो सिर्फ छोटी सी प्रॉब्लम थी कि हर महीने 2-3 दिन का 100-90 का बुखार होता था, स्कूल मिस करना पड़ता था, तो हमने फिर थोड़े और टेस्ट कराए, फिर एक डॉक्टर ने बोला सब ठीक है, बट हम लगे रहे पीछे। अल्टीमेटली एक और डॉक्टर मिले और डायग्नोज हुआ, एंड ऑफकोर्स जैसे कि आज के जमाने में होता है पेपर्स हमने US भेजे किसी जान पहचान के पास, उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये रेयर केस है लेकिन 40% किडनी जा चुकी है, ऑटो इम्यून डिजीज है।
2: तो सिम्टम्स क्या थे उन्हें, सिर्फ फीवर आता था या कुछ और भी?
3: फीवर था लेकिन अल्टीमेटली जो आउटवर्ड सिम्टम्स थे फीवर के अलावा कुछ नहीं था। पहले UTI होता था लेकिन UTI बंद हो गया था, लेकिन UTI की लिटरेचर पढ़ते पढ़ते ही मैंने नहीं सुना था कि UTI किडनी से होता है। सब लोग सोचते UTI डर्टी टॉयलेट से होता है लेकिन किडनी से भी होता है, तो इसलिए मेरे दिमाग में ये बात बैठी रही। तो देर से ही लेकिन पहले हम पीछे पड़े रहे, फिर किडनी का वो हमने एक बड़े से अस्पताल में साउथ दिल्ली में गए भी थे हम, काफी मतलब लर्नेड डॉक्टर हैं इस चीज के, बट उन्होंने कुछ नहीं है, उन्होंने जो देखा उनके सामने कुछ नहीं था। हमने 24 आवर यूरिन टेस्ट कराया तो उसमें फाइनली पकड़ में आया और एक और डॉक्टर ने फाइनली इनको पकड़ा और ट्रीट किया। शुरू में कीमो हुई थी, कीमो इज नॉट ओनली फॉर कैंसर, मेनी अदर डिजीजेस।
2: जी बिल्कुल। सो जब ये पहले प्रॉब्लम शुरू हुई और तब से जब डायग्नोस हुआ वो कितना टाइम आपको लग गया है सिर्फ डायग्नोसिस करने में इस चीज का, फिर डायग्नोसिस होने?
3: आप कह सकते हो कि इसको 6 साल लगे, अगर मैं गेस कर रहा हूँ
2: 6 साल सिर्फ डिसीज डायग्नोस ही नहीं हो पाई और अल्टीमेटली 40% किडनी डैमेज हो गई। और ये शुरू में डायग्नोस हो जाती तो बहुत चीजों को बचाया जा सकता था।
3: बिल्कुल
2: जी, बट जैसा कि आपने बताया कि सिम्टम्स भी नहीं थे तो फीवर को लेके अगर डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर सीजनल समझते हैं या फिर कुछ और, एंड UTI इज वेरी कॉमन, आपने बिल्कुल सही कहा कि UTI लोग समझते हैं कि सिर्फ डर्टी टॉयलेट से होता है या नॉन हाइजीनिक प्रैक्टिसेस से होता है, बट अल्टीमेटली इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो अभी हमेशा अपना डायग्नोस के साथ साथ डॉक्टर को जरूर चेक करवाया जाना चाहिए इन चीज़ों का।
3: हमने गलत किया इसका, क्योंकि UTI था फिर हमने घर भी शिफ्ट किया जिसमें मतलब ज्यादा फैसिलिटी थी, अलग से टॉयलेट के लिए था, तो वो सब भी किया, बट ऑब्वियसली दैट वाज नॉट द कॉज।
2: जी छाबरा जी, आप दर्शकों को ये भी बताइए कि जब ये प्रॉब्लम डायग्नोस हुई, जब डॉक्टर्स ने बोला कि 40% किडनी ही बची है, 60% डैमेज हो चुकी है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन आपको बताए गए, एंड ट्रांसप्लांट का डिसीजन कब आया?
3: 2016 में ये हुआ था, तब कहा था कि वी टेक इट एज वी सी इट, तब ट्रांसप्लांट की बात भी हुई थी। फिर तब तो सिर्फ 6 कीमो हुई, तो 6 महीने उसमें निकल गए, उसके बाद दवाइयों के बेसिस पे काफी ठीक चलता रहा। फिर इसने हॉस्टल ज्वाइन किया, उस लड़की में भी हिम्मत है, मतलब उस बीमारी इसकी जो हुई तो 10th के बोर्ड इसके कभी कभी हो चुके थे, और इसके 12th के बोर्ड में इसने एक सब्जेक्ट में टॉप भी किया CBSE में। तो कॉलेज हॉस्टल जाने के बाद सडनली इसके कुछ सिम्टम्स फिर से बढ़ गए, वही बुखार और UTI या कुछ वो चीज़ें, नौजिया वोजिया कुछ चीज़ें थी। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ये शायद बढ़ गया है 2018 में, तो तब फिर सितंबर 2018 में फाइनली हम एम्स गए। एम्स में बहुत ही एक बढ़िया डॉक्टर है, मतलब इवन तो हमारी बच्ची पीडियाट्रिक से निकल चुकी थी, फिर भी उन्होंने स्पेशल केस में विदाउट एनी अप्रोच नथिंग, सिर्फ हमने उनको ईमेल किया था नेट पे देख के, उन्हें अलग से बुलाया हमको, इतना अच्छा समझाया, उन्होंने कहा था ट्रांसप्लांट के लिए आप प्लान कीजिए 1-2 साल। फाइनली हमने प्रीएम्प्टिव ट्रांसप्लांट किया था, व्हिच इज मींस बिफोर डायलिसिस बिगिंस।
2: एंड उस केस में फिर आपको ऑब्वियसली ऑप्शन आपके पास यही था कि फैमिली में से कोई डोनेट कर दे।
3: हाँ, तो उसमें मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा मतलब ये डिटेल ओरिएंटेड है, तो वो ज़्यादा काफ़ी चीज़ों में घुसी, वो ज़्यादा उसने पढ़ाई करी हुई गूगल में, और उसने देखा कि जीन से भी होता है, ऑटोइम्यून का सोर्स क्या है उसको, तो अल्टीमेटली सब कुछ स्टडी करके एक ये थॉट आया कि हो सकता है कि किडनी रिजेक्ट हो जाए। बीच में मेरा किसी और फ्रेंड से बात कराई, इसने अपनी वाइफ को किडनी डोनेट की थी, विच वॉज अ थर्ड किडनी फॉर दैट हिज वाइफ इन 20 years or something, मतलब एक किडनी 15 साल चली, एक किडनी 4 साल चली, ऐसे कुछ। तो ये दिमाग में था कि वन किडनी माइट नॉट
2: रिपीट हो सकती है ये चीज।
3: हाँ, वी डोंट नो, जिस बीमारी ने मेरी किडनी को खाया हो वो नेक्स्ट किडनी को भी खा सकती है, खासकर क्योंकि सेम DNA है। तो फिर मैंने सबको चुप कराया, मैंने बोला आई एम दी ओल्डेस्ट इन द लाइन ऑफ डोनर्स, it's best that I do it, and I was also an athlete, my health also was the best among all the people offering the kidney at that point of time.
2: So but us time par jab aapne decide kiya, and then kai baar bacche hote hain jo nahi itna kasht dena chahte apne maa baap ko, to kai baar wo mana karte hain, kabhi kabhi bachchon ke case mein maa baap bolte ki nahi hum bachche se nahi le sakte, to aapke case mein bhi aisa kuch tha ki aapki jo daughter thi?
3: ऐसा कभी मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है कभी ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ, तो यह वही स्मूथ रिलेशनशिप।
2: मैंने आपकी डॉक्टर का नाम नहीं पूछा, आप क्या बताने का उनका नाम बताएंगे?
3: मेरी डॉक्टर का नाम है ईशिता,
2: ईशिता,
3: उसको तो प्यार से हम इश्टी कहते हैं।
2: जी, कई बार होता है सर, जैसे आपने बोला कि आई एम द ओल्डेस्ट एंड आई एम फिट एंड फाइन एथलीट है, हेल्थ भी काफ़ी अच्छी है, तो इसके बावजूद भी कई बार जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो दूर के रिश्तेदार होते हैं, इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो लोग कई तरह की बातें करते हैं, कई तरह का हमें नेगेटिव चीज़ें बताते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो आपके केस में ऐसा कुछ हुआ था किसी ने इस चीज़ को अपोज किया हो कि तुम मत दो या फिर ऐसा देना सही नहीं होगा?
3: नहीं, हमारे यहाँ तो उल्टा हुआ, मतलब देने के बाद बहुत से लोग मुझे सेलिब्रेट कर रहे थे, तुमने बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया है, मुझे तो 400 लोग, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या बड़ा काम किया, मतलब बच्चे के लिए तो
2: यार माँ बाप करते हैं इसलिए, फिर भी कुछ लोग होते हैं जो नहीं समझते इन चीज़ों को। तो अब जब किडनी डोनेशन हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, तो आपकी तबीयत और डॉटर इशिता की तबीयत कैसी है, अब वो कैसे हैं?
3: काफ़ी अच्छा है, मतलब फंक्शनिंग है, उसने अपना कॉलेज से डिग्री ख़त्म किया बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट, उसने सेफ्टी के कारण 1 साल ड्रॉप किया, एंड वी बोथ हैव सर्वाइव 2 ईयर्स ऑफ कोविड। सोचिए कि 2019 अक्टूबर 25, तो दिवाली के 2 दिन पहले हमारा सर्जरी हुआ, और नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने के बाद कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया, हम दोनों ने उसको अच्छे भले भांति सर्वाइव किया है, बल्कि मैंने तो कोविड के हर महीने में 2020, 21
4: ऑलमोस्ट हर महीने मैंने एक हाफ मैराथन दौड़ी है वर्चुअल, उस टाइम भी वर्चुअल होती
2: जी।
4: तो
2: सबरा जी हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे और वापस आकर नई जानकारी हासिल करेंगे आपसे।
4: ओके।
1: ब्रेक से पहले आइए सुनते हैं भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का अंग दान से जुड़ा अपना व्यक्तिगत अनुभव।
5: कहते हैं जान है तो जहान है, बात सच है, लेकिन जब जान नहीं रही तो क्या हम किसी और को जिंदगी दे सकते हैं? जी हाँ, हम जाने के बाद अपनी आँखें किसी को दे सकते हैं, तो हमारी आँखों से वो दुनिया को देख सकता है। हम अपने दूसरे ऑर्गन दे सकते हैं, दिल दे सकते हैं, और किसी और को ज़िंदगी मिल जाएगी। मेरी वाइफ मेधा, उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ और 13 साल उसने ज़िंदगी और गुजारी। ये तभी हो पाया कि जिसने हार्ट डोनेट किया था उसको ये अवेयरनेस थी कि मेरे जाने के बाद मैं किसी और को एक्स्ट्रा ज़िंदगी दे सकता हूँ। अगर ये चीज़ हम आप सब समझ जाएं, तो ना जाने कितने लोगों का संसार खूबसूरत हो सकता है हमारे जाने के बाद। हिंदुस्तान में हर साल करीब 5 लाख लोग इसलिए मर जाते हैं कि उनको वो ऑर्गन नहीं मिलते जिससे कि उनकी ज़िंदगी बच सकती है। आप ऑर्गन डोनेट करके हीरो बन सकते हैं। हीरो बनने के बहुत से तरीके हैं, ये भी एक तरीका है हीरो बनने का कि ज़िंदगी भर कोई आपकी बातें करेगा। एक व्यक्ति 8 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। 8 लोगों को आप ऑर्गन डोनेट करते हैं केवल एक बॉडी से, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो सब लोगों के तो आप हीरो हो गए। तो कितना अच्छा होगा कि इस बात को समझें और लोगों को समझाएं। हमारा मकसद यही है कि ये खबर सब तक पहुंचाएं, सब इस बात को जानें कि एक आदमी 8 लोगों की जान बचा सकता है, उन 8 लोगों के आप हीरो बन जाएंगे। तो आज ही प्लेश करिए और हमारा साथ दीजिए।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे थे संजीव छाबड़ा जी से, जिन्होंने अपनी एक किडनी अपनी डॉटर को इश्ता को डोनेट करी और उनकी जान बचाई। छाबड़ा जी, ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि सर्जरी के थोड़े थोड़े महीनों बाद ही कोविड आ गया था, अभी आप दोनों बिल्कुल फिट हैं, तो आपको कोई स्पेशल मेडिसिन लेनी पड़ती है डोनेशन के बाद? बिकॉज कई लोग सोचते हैं कि हम डोनेट करेंगे तो हमारी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी, तो अब आप अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो आप अपनी समस्याओं के बारे में बताएं, अगर कुछ आपने फेस किया हो तो।
2: मुझे वैसे कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि अगेन जब ट्रांसप्लांट की डेट डिसाइड हो रही थी तो मैंने एक ही चीज पूछी। मैंने कहा बॉम्बे मैराथन के अभी जो है रजिस्ट्रेशन खुल गए हैं, एक आध दिन में खत्म हो जाएंगे। मैं नॉर्मली फुल मैराथन के लिए दौड़ता हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ ट्रांसप्लांट क्या मैं फुल मैराथन दौड़ सकता हूँ? लोग बोले क्या पागल आदमी है, यहाँ क्या ऑपरेशन की बात हो रही है? फिर हमने जवाब नहीं दिया। बाद में मेरे दूसरे डॉक्टर ने बोला हाफ मैराथन दौड़ लेगी, मैंने हाफ मैराथन दौड़ी थी। बट खैर, तो अदरवाइज एक जो चीज़ मुझे नहीं मालूम थी कि किडनी डोनर के लिए जो ऑपरेशन इज लाइक सिजेरियन सेक्शन, बेबी निकालने के लिए एक कट होता है पेट में, तो दैट कैन लिटिल बिट जो सिजेरियन के बाद वेट गेन का जो चांस है उसके लिए आपको प्रिकॉशन करनी चाहिए, तो बस वही प्रिकॉशन करनी होती है। थोड़ा सा डाइट में, थोड़ा सा एक्सरसाइज में, मतलब योगा करके वो स्टमक के मसल्स को ठीक ठाक करो, तो दैट वॉज दी ओनली प्रिकॉशन विच आई डिडंट वेयर वाजंट अवेयर ऑफ। थोड़ा सा मतलब मेरा एक बड़ा, मैं उसको मतलब ऑलमोस्ट नेगेट कर चुका हूँ, लेकिन उससे मुझे फिटनेस में फर्क नहीं पड़ा। मैं दौड़ता उड़ता हूँ, सब कुछ करता हूँ, एंड
1: बाकी आपको किसी
2: डॉक्टर हमारा कॉमन था, बेटी और मेरा, तो बेटी को तो सब प्रिकॉशन ने बता दिए कि ये सब वो सब, और खाने में ये प्रिकॉशन, और हर रोज कितने बजे ये दवाई। मैंने कहा मेरे लिए क्या है? तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, यू आर ए नॉर्मल पर्सन जस्ट कम फॉर मंथली एनुअल रिव्यू, दैट इज ऑल। और मैंने कहा मैं ना स्पीड डॉग्स को बहुत फीड करता हूँ, तो कोई इन्फेक्शन का डर है? तो आपको उतना ही इन्फेक्शन का डर जो नॉर्मल आदमी को है। अब ये भूल जाइए कि आपकी एक किडनी है, दो किडनी, तो मैं वैसे ही जिया हूँ अपना, जो खाता था पहले मीठा अब नहीं खाता हूँ, वो अभी तक कहा नहीं, बट
1: अब ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं उस अपनी हेल्थ को लेकर एंड प्लस वेट गेन को लेकर।
2: ऑपरेशन हुआ था उस टाइम मैं प्री डायबिटिक था, मेरी हेरिडिटरी है, फादर उनके सारे भाई डायबिटिक रह चुके थे, सभी कंट्रोल किया एक्सरसाइज और डाइट से, पर सबका था। तो मैं ऑलरेडी मेरा 5.9 HbA1c में मैं ऑपरेट हुआ हूँ, और तो 2019 में जो धीरे धीरे वो जो बढ़ता है, 2022 में क्योंकि मेरा एनुअल चेकअप होता है किडनी का, पूरा स्कैन होता है और सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, इसलिए मेरा डायबिटीज स्टार्टिंग में पकड़ में आ गया 2022 में, तो कंट्रोल में है। अगर मेरा एनुअल चेकअप नहीं होता बिकॉज ऑफ किडनी, तो जैसे बाकी लोगों का होता है 400-500 की शुगर के बाद पकड़ में आता है, तो आई एम स्टिल रनिंग, आई एम स्टिल एंजॉयिंग माय लाइफ।
1: एंड अगर बेटी की बात करें तो उनकी हेल्थ कैसी है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद?
2: शी इज हैविंग अ नॉर्मल लाइफ, उसने पूरा एक साल ड्रॉप किया था उसने सर्जरी के लिए, वो भी मतलब ज्यादा प्रिकॉशन करते हैं ना पेरेंट्स, डॉक्टर ने कहा था ये आपने आपका ट्रांसप्लांट कर दिया आप नॉर्मल हो, पर फिर भी सबने प्रिकॉशन किया, तो एक साल उसका ड्रॉप किया कॉलेज के, बाकी उसने पूरे किए। अब वो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उसके कॉलेज का 1.5 साल तो कोविड में निकल गया, और लेकिन उसने आखिरी 3 महीने उसने हॉस्टल में निकाले, उसमें थोड़ी मेरी वाइफ को थोड़ा डर था कि फ्रेश फूड बहुत जरूरी है मेरी बेटी के लिए, तो मेरी वाइफ ने मेरी डॉटर के हॉस्टल के पास ही घर ले लिया और डेली फ्रेश फूड बना के उसको, मतलब ऑफिस से छुट्टी ले ली थी उसको देती थी, मतलब फूड भेजती थी। जी,
1: तो छाबड़ा जी, अगर हम लोगों को देखें हमारे समाज में ऐसी चीज़ों को लेके, अंगदान को लेकर या फिर किडनी डोनेशन को लेकर बहुत सारे मिथ्स, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
2: एक्चुअली मैं तो अपना खुद एग्जांपल एक दूंगा कि मैं शायद 31 साल का था, तो मेरे ऑफिस निकल का था, उसका मोटा चश्मा था, मुझे मालूम पड़ा कि उसकी एक आंख है नहीं, पर मुझे उससे मिलने के 4-5 साल बाद मालूम पड़ा कि उसकी एक पत्थर की आंख है, बट ही वाज नॉर्मल, ही वाज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट बॉयज इन आवर ऑफिस, मोस्ट इंटेलिजेंस एंड एवर न्यू दैट ही डिडंट हैव वन आई. तो कुछ सालों के बाद, समझो कि 2004-5 के बाद के आसपास की बात है, तो मेरे फादर का एक आंख चली गई थी बिकॉज ऑफ एज रिलेटेड मैक्रो डिटेरियरेशन. मैं डॉक्टर को पूछा था कि भाई मेरा एक वो दोस्त है उसकी वो एक आंख से काम चला रहा था, मैं भी मेरी एक आंख जा सकती हूँ पिताजी के साथ. तो कहते नहीं इनकी आंख नहीं, इनकी ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी, कोई नथिंग इज पॉसिबल. सो ऑलरेडी मेरे दिमाग का रास्ता तो क्लियर हो चुका था. एंड अगर कोई डाउट भी होता है तो मैंने एक्चुअली एक फेसबुक पे ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है किडनी डोनर्स. देखो बात करते करते फेसबुक पे जो भी है मतलब किडनी डोनर लाइफ किडनी डोनर्स इसमें ज्यादा यूएस के लोग हैं. बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अल्ट्रुइस्टिक डोनर है, मतलब कोई मतलब अपने फैमिली मेंबर को नहीं दे रहे हैं. और बहुत से नॉन डाइटेड डोनर्स भी हैं जो मतलब आज उन्होंने किसी और को दिया और एक साल बाद उनके फैमिली मेंबर को मिलेगा. तो सब एकदम मस्त हैं, बल्कि अभी तो शायद इस महीने या अगले महीने तो पर्थ में ट्रांसप्लांट गेम्स भी है. मैं जाना चाह रहा था, जा नहीं पाया.
1: बिल्कुल
2: अगली बार जाऊंगा, ओलंपिक्स होती है ट्रांसप्लांट की.
1: बिल्कुल आप भी जा सकते हैं, इवन आपकी डॉटर भी पार्टिसिपेट कर सकती है उसमें. नेक्स्ट टाइम 2025 में जर्मनी में होने वाले हैं.
2: बहुत बढ़िया
1: जी. सो संजय जी, यहाँ पर हम फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने शो को कंक्लूजन की तरफ ले जाएंगे.
2: ओके.

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: नमस्कार दोस्तों, हम वापस आ गए हैं अपने इस अंतराल के बाद और हम बात कर रहे हैं सावरा जी से, जिन्होंने अपनी किडनी अपनी डॉटर को डोनेट करी थी। ब्रेक में जाने से पहले हमने कई सतहों के बारे में जाना और कंडीशन की, कैसे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी डायग्नोज करने में अंदर, और तो आइए हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और उनसे नई जानकारी हासिल करते करते। सावरा जी, हमारे देश में अंगदान की जो दर है वो बहुत कम है, और जो जितने अंग प्रत्यारोपण हमारे देश में होते हैं उनमें से ज्यादातर अंग प्रत्यारोपण उन लोगों के होते हैं जिन लोगों ने अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी एक किडनी या फिर लिवर का कुछ भाग डोनेट किया है। बट डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन मतलब मृत्यु के बाद अंगदान को लेकर बहुत कम जागरूकता हमारे देश में है, और हमारे देश में इतने लोगों की मृत्यु तो होती है, ज्यादातर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई 1.5 लाख लोग हर साल मृत्यु का शिकार होते हैं सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, लेकिन उनके ऑर्गन डोनेट नहीं किए जाते क्योंकि जागरूकता की बहुत कमी है। तो आपने तो अपनी डॉटर को डोनेट किया है, लेकिन आप इस डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम को मतलब मृत्यु के बाद अंगदान को कैसे किस तरह से देखते हैं, और अगर हमारे देश में भ्रांतियों को देखें अगर इस तरह से, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं अंगदान के ऊपर कि ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान के ऊपर जागरूकता बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान के लिए सामने आए, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं हमारे देश में जिनकी फैमिली में कोई डोनर अवेलेबल ही नहीं है या फिर कोई मैच नहीं हो रहा फैमिली मेम्बर का ब्लड ग्रुप या फिर ऑर्गन, तो उनके पास सिर्फ एक ही सहारा है कि मृत्यु के बाद जो लोग अपने अंगदान करें वो अंगोडेबल है।
2: तो इस मामले में तो एक्चुअली हमारे फ्रेंड सर्कल में एक है, मेरे से मेरे कॉलेज का एक जूनियर है कभी जैन, जब उसके फादर की डेथ हुई थी आज से 10-12 साल पहले, तो हम उसके घर गए उसी दिन, हम इन्फॉर्मेशन कब है कहते लोग क्यों कहते हिज बॉडी हैज बीन डोनेटेड।

0: games and within hours all the different जो आइस के डोनेशन लेने वाले हैं वगैरह वगैरह वो पहले आ जाते हैं जी हाँ ये स्टार्टिंग का फाउंडेशन कॉल फ्लैट इन लाइफ आफ्टर डेथ वो थोड़ा बिजी रहता है वो फाउंडेशन स्टार्ट करता है फिर कर नहीं पाता या कर चुका है उसको वो झटके में चलते जाए बट जी ऑलमोस्ट हमारे फ्रेंड सर्कल में सब उसी के पास अप्रोच करते हैं जब किसी के मतलब फैमिली मेंबर की डेथ होती है अगर उसकी फैमिली मेंबर की मर्जी हो या नियरेस्ट की मर्जी हो तो हम उसको बोलते हैं भाई हमारी हेल्प करते हैं हम चाहते हैं और हम सब लोगों ने तो उसको बोल रखा है तो हम लोग पेपर वर्क में वीक हैं लेकिन हमारा भी कर देना अभी वो सब आर वेरी वीक इन यू नो एक्चुअली अप्लाइंग फॉर ऑर्गन डोनेशन दैट इज माई प्रॉब्लम ऑल्सो मैंने भी सिर्फ लाइसेंस भरने के टाइम में अप्लाई किया और
1: जी तो आपने लाइसेंस की बात करी तो ये मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि आजकल ऑर्गन डोनेशन के ऊपर आपकी जो सहमति है वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के टाइम पर भी पूछी जाती है जब भी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म भरते हैं या फिर रिन्यूअल का फॉर्म भरते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि किसी दुर्घटना की स्थिति में क्या आप अपने अंगदान करना चाहेंगे तो मेरा आप सभी श्रोताओं से एक अनुरोध है कि आप प्लीज उसे यस जरूर करें जरूरी नहीं है आपका डोनेशन हो ही जाएगा लेकिन आप अपनी इच्छा तो जाहिर कर ही सकते हैं और आपकी एक हाँ से एक इच्छा से करीब 8 लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है एक इंसान जब अपने मृत्यु को प्राप्त होता है तो अपने सिर्फ किडनी ही नहीं 8 ऑर्गन्स ऐसे डोनेट कर सकता है जिनसे 8 अलग अलग लोगों की जान बचाई जा सकती है तो ये पूरे परिवार की जान बचती है जब किसी एक इंसान की जान बचाई जाती है अंगदान से तो एक्चुअली उसके पूरे परिवार की जान बचती है बिकॉज आपने कभी अगर देखा हो किसी पेशेंट को जो डायलिसिस पर है तो आपको रियलाइज होगा कि सिर्फ वो पेशेंट ही सफर नहीं कर रहा है उसकी पूरी फैमिली सफर करती है हर रोज आना जाना हॉस्पिटल में अपने स्कूल कॉलेज या अपने ऑफिस से छुट्टी लेना देन उस पीड़ा को सहना ऑफिस इलाज के खर्चे इन सब चीज़ों से फैमिली पूरी टूट जाती है तो जब एक इंसान की जान बचती है तो उसके पूरे परिवार की जान बचती है एंड ट्रांसप्लांट आपकी पूरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल कर देता है बस आपको कुछ मेडिसिन कुछ चीज़ों का परहेज रखने की जरूरत है अदरवाइज आप बिल्कुल नॉर्मल हो आप किसी से भी कम नहीं हो आप दौड़ सकते हो भाग सकते हो वजन उठा सकते हो जैसे सर का एग्जांपल देखें तो सर आज भी अपनी रनिंग करते हैं उन्होंने अपनी एक किडनी दे दी है और लोग ये भी मानते हैं कि मैंने अगर अपनी एक किडनी दे दी तो मुझमें कमी आ जाएगी मुझमें कमजोरी आ जाएगी मुझे बच के रहना पड़ेगा तो सब कुछ भी नहीं है आप पूरी तरह से नॉर्मल हो आप हर वो काम कर सकते हो जो एक नॉर्मल इंसान करता है
0: मैं एक और छोटा सा ऑर्गन डोनेशन भी बता सकता हूँ आपको जो कि ये लाइफ सेविंग नहीं है ऑर्गन भी नहीं है बट इट इज एस्टीम सेविंग जो मुझे एक्चुअली मिलन सोमन ने बताया था मैंने एक बार किया है इट इज हेयर डोनेशन आई वेंट थ्रू दैट इट्स माइट साउंड लिटिल बिट फ्रिवोलस ऑन द फेस ऑफ इट बट मैंने बाल अपने काफी लंबे अस्त किए थे काफी मतलब मेरा अच्छा सा पर्सनैलिटी हो गई थी लोगों के बीच में तो जब मैंने पढ़ा कि आप अगर अपने बाल डोनेट कीजिए तो कैंसर पेशेंट्स के लिए विक बदली हुई कैंसर पेशेंट्स कैन नॉट टेक केमिकल विक्स जो आर्टिफिशियल होते हैं तो उसमें मुझको 3 महीने लग गए जब मिलन सोमन ने कैंपेन चलाया था और एक्चुअली मतलब ये डोनेट करने में क्योंकि मेरी सेल्फ एस्टीम बनी हुई थी मेरे बालों से मैंने सोचा मैं तो आदमी जो औरतें हैं जिनके लिए बाल बहुत बड़ा पार्ट है सेल्फ एस्टीम का और उनकी कीमो होती है उनके लिए कितनी बड़ी बात है ये एंड इफ दे फॉर सम मेडिकल रीजन कैन नॉट टेक एन आर्टिफिशियल विक तो देन दैट मेड मी उस टाइम मेरे इतने लंबे बाल नहीं थे कि मैं चोटी से काट के डोनेट कर दूं मुझे पूरा एक गंजा होना पड़ा तो मैं एक साल गंजा रहा पूरे कोविड में
1: बिल्कुल आपने सही कहा कि जब कीमो चलती है तो बालों को नुकसान होता है और हमें अपने बाल देने पड़ते हैं और जो फीमेल्स हैं उनका तो सबसे बड़ा गहना माना जाता है उनके जो केश हैं बाल हैं और जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कॉन्फिडेंस जो एक लाइफ को जीने का एक अंदाज है वो बदल जाता है जब आपके बाल नहीं रहते आप दुनिया के सामने से जाने से कतराते हैं तो ऐसे लोगों की इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है तो उनको कॉन्फिडेंस वापस मिलता है दुनिया के सामने जाने का अपनी बीमारी के रहते हुए अपने नॉर्मल जो डेली रूटीन के काम है अपनी अर्निंग है अपने ऑफिस है अपने कॉलेज स्कूल जो भी है ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बोलने में बहुत आसान लगती हैं लेकिन ऑब्वियसली करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनके लिए बहुत मैटर करता है और उनकी पूरी लाइफ पूरा दिन उस बात से चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल, हेयर डोनेशन एक चीज़ है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नॉन एसेंशियल है लेकिन स्टिल वो बहुत इम्पैक्टफुल रहती हैं किसी की लाइफ में। जी साबरा जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर हमें समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे श्रोताओं को बताएं। एंड श्रोताओं से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे छाबरा जी ने किसी की जान बचाई और हमेशा वो ये ट्राई कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक बनाया जाए किसी ना किसी
0: तरह से।
1: मैंने आपकी इसलिए एज नहीं पूछी क्योंकि जनरली एज पूछना मुझे ऑड सा लगता है, जब मैं किसी की भी एज नहीं पूछता।
0: नहीं नहीं, डोनेशन में ये वाला पॉइंट भी आता
1: है
0: ना।
1: यस बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज्यादा इसलिए, जी कई लोग सोचते हैं कि मेरी एज ज्यादा है इसलिए मैं डोनेट नहीं कर सकता, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। आप कितने ही बुजुर्ग हैं या आप कितने ही यंग हैं लेकिन अगर आपका जो डोनेट आप जो पार्ट कर रहे हैं जो ऑर्गन कर रहे हैं वो हेल्दी है तो आप बिल्कुल डोनर बन सकते हैं।
0: फिर किडनी डोनेट कर, दैट मींस अ बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी आप किडनी डोनेट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल। इवन मैं भी एक पर्सन को जानता हूँ, सर गंगाराम हॉस्पिटल के चेयरमैन थे वो, श्री तेजराम जी, उन्होंने 88 इयर्स की एज में अपनी किडनी अपना हार्ट और लिवर डोनेट किया था। ऑलमोस्ट 90 इयर्स उनकी एज हो गई थी, 88 क्रॉस हो गए थे। तो एज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती, मैटर सिर्फ उस ऑर्गन की हेल्प करती है जो आप डोनेट करने जा रहे हैं। चलिए छाबरा जी, हम यहाँ पर आपसे विदा लेते हैं और अपने श्रोताओं से भी हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और हस्ती के साथ जल्दी ही हाजिर होंगे और नई चर्चा हम जारी करेंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे।
0: थैंक यू सो मच। ओके,
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं। आओ मिलके एक दिया जलाएं, दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेही की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।
3: आज का ये विशेष कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे इसी संदेश के साथ विदा लेते हैं कि अगर हम अंग दान या नेत्र दान करें या अपने जाने के बाद किसी के जीवन में खुशियां भर सकते हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और एक सर्टिफिकेट ईमेल किया जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सभी को प्रेरणा दें। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है, अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सीय सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सीय उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता 2026 के तहत कार्यक्रम की थीम है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। भारत ने अपने ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग समन्वय के लिए जन केंद्रित और मनुष्यता प्रथम दृष्टिकोण से प्रेरित सामूहिक प्रयासों के केंद्र में आम लोगों को रखा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव सुधाकर दलीला ने नई दिल्ली में ब्रिक्स सेल फोरम में कहा कि भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता में संचालित 350 से अधिक बैठकों से विभिन्न सेक्टर के बारे में महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिले हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए जल्द ही उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के दो दिन के सम्मेलन के उद्घाटन के बाद बताया कि ये समिति बैंकिंग सुधार के लिए भावी कार्यनीति तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की आलोचना की है जिसमें उन्होंने खुद को दिमागी नक्सली बताने पर गर्व व्यक्त किया था। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने आज नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस सरकारें नक्सलवाद को समाप्त करने में विफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस समस्या पर निर्णायक रूप से नियंत्रण किया गया है।
1: नक्सलवाद का खतरा भारत के इतिहास में आज तक आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्पन्न सबसे बड़ा खतरा है। 13 अप्रैल 2006 और 31 मार्च 2026 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उस चीज को जो डॉक्टर मनमोहन सिंह समझ गए थे नक्सली दिमाग वालों से भरी हुई सुपर कैबिनेट यानी एनईसी के द्वारा उनको कुछ करने नहीं दिया गया था यदि वह कार्य सिद्ध करके दिखाया तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने।
0: उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से कहा कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आय के 11 स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में कार्यवाही आगे न बढ़ाए। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य तथा समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन 3 विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में और वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। बिहार में लखीसराय जिले के अशोक धाम मंदिर में हुई भगदड़ में 7 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है जबकि 10 से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सावन माह के 3rd सोमवार को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ एकत्र थी। भगदड़ अशोक धाम स्टेशन से मंदिर तक के रास्ते में बिजली के खंभे में करंट आने की अफवाह से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के निकट परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास स्थित एक होटल में आज तड़के आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। होटल मालिक ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। पूर्वी इंडोनेशिया में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। बचाव दलों ने कल 6 और शव बरामद किए। 135 लोगों के घायल होने की सूचना है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका ने 5 विकेट पर 119 रन बना लिए हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये याद

0: बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है, रहा।
2: चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे।
9: दीवार पे लगाने वाला ना है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
9: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके। अब वो देखो शुक्ला जी आ गए। देखो
12: शुक्ला जी, वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो रिंजन धर्मशाला और आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं पंजाबी गीतों के कार्यक्रम में। बिल्कुल कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों उम्मीद करते हैं इस प्यारे से पंजाबी गीतों के सफर को आप सभी एंजॉय जरूर कर रहे होंगे। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से सुनते हैं एक और

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी एंजॉय कर रहे थे पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: सूर्य घर।
2: आज स्कूल में क्या सीखा?
3: मछली जल का रानी।
2: जल का नहीं, जल की।
3: जीवन उसकी पानी।
2: उसका
3: पापा पापा दूध उबल रही है।
4: उबल रहा है रहा।
3: चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ाया।
5: चटाई।
3: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
6: बेटा खाया नहीं, खाई।
3: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
2: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
4: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
3: वो तो आ गई।
2: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
3: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
12: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की,
16: वही असली तरक्की।
15: एक कदम स्वच्छता की ओर।
17: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
18: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

0: ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तो हाँ सारे दा ही शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। इसी कने तो हाँ सारे ही ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से थोड़ा दिया फ्री ते रुकी आने क्योंकि बरखा जड़ा है से लगी हुआ है कने जरूर तो हाँ सारे भी अपने अपने शहर दी या अपने अपने ग्रां दा जड़ा मौसम है से जरूर आहां तक दसी तक दे कने कदिया मौसम है कने आज वैसे भी खास दिन है क्योंकि हर दिन आहां वास्ते खास होंदा कने अजकना जिड़ा दिन है से कयो खास है तिदे ऊपर भी जरूर अहां गलबात करनी है कने 17 अगस्त 2026 दी अहां गल करिए ता आज जिड़ा तोहां खास दिन बना देन कुथी ना कुथी अहां दी संस्कृति कने भी जुड़े न कने अहां दे जिड़ा परंपराएं या अहां दे जिड़ा रीति रिवाज हन जरूर तिना कने ए जिड़ा गल्ला बातां न से जरूर जुड़ियां न। पहले तो तुहां सारे जो ही नागपंचमी दियां ढेर सारी शुभकामनाएं कने इसी कन्ने जेड़ा जोड़वे पत्रोड़वे दी जेड़ा संगरांद है उसकी भी बड़ियां सारियां मुबारकां होन। तो जरूर तुहां भी आज नए नए जेड़ा पकवान हैं से बनाए होने न ता जरूर अपने जेड़ा पकवान हैं तिना जो भी खा कने इस टाइम तुहां जो इंतजार रहिंदा है कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दुईया तो सारे इस कार्यक्रम दे सफर कने जुड़ते न। अगले जेड़ा पहले श्रोता न से अहां कने जुड़ चुके हो न कर दिन तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है न
1: जी? बढ़िया
0: जी अहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तुहां कुथों ते बोला दे कने तुहां दा नां के है जी? जोड़ू पत्रोड़ू दी संगरांद है उस दिया भी बड़िया सारिया मुबारका हों जी। जी धन्यवाद जी तुहांदा जी। ता वंदना जी तुहां भी इस संगरांदी जो बनांदे बनाए तुहां जी जी तो आज क्या क्या पकवान जड़े से तो हम बनाई रखे हो? जी जी तो वंदना जी आज तो हम कुंदिया गीत जड़े से सुनना पसंद करके जी जरूर है गीत ते फरमाइश तो तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तो हम दा
1: जी।
0: नमस्ते जी। ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला इसी गूंज कन्ने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर दा आगाज कर देन इस गीत कन्ने।

0: श्रोताओं तो सारे सुनया ये प्यारा दया गीत, प्यारी दई फरमाइश, काल चुमे पीड़। इस गीत की फरमाइश आह जो आई हो वह सिद्धबाड़ी ते कने तिना दा ना वे वंदना जी, तो जरूर वंदना जी तक अह आएगी ते फरमाइश पहुँचाई कने तुहा सारे भी इंजॉय की। कने आज कने दिने दा जेड़ा सफ़र है से जरूर तुहां दा बेहतर चलिया होने, क्योंकि जिंदगी दा जेड़ा सफ़र है ना या हर दिन अहां वास्ते खास होंदा। कने कुछ जेड़ा त्यौहार हैं से जरूर अहां जो हमेशा अहां दी संस्कृति कने जोड़ी करी रखदे न या अहां दी जेड़ा परंपराएं न तिना कने जोड़ी करी रखदे न। पर से अहां पर निर्भर करदा है कि जेड़ा अगर अहां अपने जेड़ा पहाड़ हैं, पौधे न, नदी हैं, नाले न, नेचुरल चीज़ा न, तिना दा कितना की बचाव करते न। आज कने दौर दी गल करिए तां अहां हमेशा जेड़ा पैसे जो ज़्यादा अहमियत जेड़ा है से जरूर दिंदे न। अहां कुसी दी भावना जो जेड़ा है से नहीं समझते, चाहे परिवार दी गल करिए, चाहे रिश्तियां दी गल करिए, रिश्ते अंदर कितनी की जेड़ा अहमियत है से है, क्या तुहां जो लगता? थोड़ा दिया सोच विचार करके देखा कि अहमियत जेड़ा है से हर चीज़ दी है। अगर अहां परिवार दी गल भी अहां तुहां तक पहुँचाई कि परिवार भी अहां वास्ते बड़ी अहम भूमिका अदा करता है, इतना ही ज़रूरी अहां वास्ते अहां दी जेड़ा संस्कृति है, अहां दे जेड़ा रीति रिवाज हैं, सभी ज़रूरी हैं। पर अहां कुछ दी या कोशिश करा देती ना जो बचाने दी। आज जेड़ा से तुहां जोड़वे पत्रोड़वे दी जेड़ा संगरांद है तिहा जो बना दे होने न, कने जेड़ा पत्रोड़े न से तुहां बनाए होने न, तो ज़रूर कचालू जेड़ा न तिना दे जेड़ा कचालुआ दे जेड़ा पत्ते न तिना जो तुहां पत्रोड़ू जेड़ा से थोड़ी दी मेहनत तो हर चीज़ से लगती है, पर तिसी कने मेहनत करी करी अहां तिहा चीज़ा दा जेड़ा स्वाद है से भी ज़रूर लैंदे न। कने गुप्त नवरात्रि भी चलिए न तो त्यौहारा वाला जेड़ा माहौल है से कुथी ना कुथी अहां जो एक दुए ने जोड़ी करी रखते न। कने इसी कने अज ते जेड़ा बड़ा महीना है सभी शुरू होई जाना है, तो ज़रूर हर चीज़ दी अपनी जगह, हर चीज़ दा महत्व है। पर से यहाँ पर निर्भर करदा कि अहां किस प्रकार जेड़ा अपनी संस्कृति जो बचांदे न या अपनी जेड़ा परंपराएं न या अपने जेड़ा त्यौहार हैं, त्यौहारा दा मतलब क्या है? थोड़ा देहा तुहां सोच विचार करा कि त्यौहारा दा जेड़ा मतलब है से क्या वै, अहां त्यौहार जेड़ा न से कै बनांदे? थोड़ा देर सोच विचार करी कर दसा, फिर तुहां इस कार्यक्रम दे सफ़र च अहां कन्ने जुड़ा कि जेड़ा अहां जितने भी त्यौहार बना दे न तिना दा क्या मतलब है। ज़रूर तुहां इस कार्यक्रम दे सफ़र च अहां कन्ने जुड़ सकदे, कन्ने अहां कन्ने गलबात जेड़ा इसे करी सकदे। गलबात करने वास्ते जेड़ा अहां दा नंबर है से पहले तुहां तक पहुँचाइंदे न, क्योंकि नंबर तुहां तक पुजियांगा ताई तां तुहां इस नंबर पर कॉल करी सकदे या टेक्स्ट मैसेज करी सकदे या व्हाट्सएप मैसेज करी सकदे। नंबर है 7018117091। नंबर मैं दिता है तुहां तक पहुँचाई, कने बाकी जेड़ा काम है से तुहां दा है। तहां दे जरूर अगले जेड़ा श्रोता है न से जुड़ी चुके हैं कर दें तिना कन्ने गल बात। हैलो,
1: हेलो, नमस्ते शशी जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है
1: जी? बिल्कुल जी, तुहां सुना?
0: जी यहां भी बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: अच्छा जी, आईया तो खाना खा लिया
0: जी? जरूर जी। आज क्या स्पेशल जेड़े से तुहां बनाई ते आ?
1: आज स्पेशली समझा के कि आज मैं नोए तरीके ने दाल बनाई
0: जी। आज नोए तरीके ने दाल बनाई ता हंदे श्रोता तक भी जरूर पहुंचाई दे, सभी सीख लेंगे कने सभी कोशिश करके नोए तरीके
1: जी। जी जी, आधी कटोरी मैं लाल मसर होंदे ना मलका मसर जिसी बोल दे
0: जी जी जी,
1: आधी कटोरी से लेई कने एक कटोरी जी, क्योंकि हां छोटी दी फैमिली है तो अब तुहां ता बाकी जड़े वे अपने फैमिली दे अकॉर्डिंग मतलब कम ज्यादा
0: जी जी।
1: ता एक कटोरी मैं चने दाली दी पाई ना
0: जी,
1: फिर मैं खड़ी की धोती कने फिर मैं चाह मतलब कुकर च पाई थी उस चिकन ने एक प्याज कटिया सह पाई था दो दो तीन टमाटर कट्टी कट्टी पाई थी मतलब वो नहीं दो पीस कितने ज्यादा नहीं कट्टे।
0: जी
1: हाँ जी कने दो चार मिर्चा पाई थी
0: जी
1: कने दो चार लसने की गुलियां पाई थी
0: जी
1: फिर इस पानी पाया कने उबालना रखी थी
0: जी जी
1: फिर उबली तो उबलने के बाद फिर किसी ना फिर तड़का लगाया बाद जिया छोटे पैन होंगे ना
0: जी
1: उस जिया जीरे का कने बीन पाई लिया उस कने कड़ी पत्ता होंगे कड़ी पत्ते पाई ले
0: जी जी
1: कने हींग पाई लेना कने थोड़ा लसन कट्टी के पाई लेना कने हरिया मिर्चा कट्टिया कने थोड़ा कश्मीरी लाल मिर्च जरूर कने हल्दी पाई
0: जी जी
1: सैती का चुड़का लगाना कने जरा के बॉयल करनी है थोड़ी देर कने फिर इसे दाल मैं तो सोचे पता नहीं कितनी बननी पर मैं बनाई पहली फिर से बड़ी टेस्टी बनी
0: जी तो मुझे लगा तो मुझे होना ही होना है
1: बिल्कुल जी
0: जी क्योंकि तो हाँ उन मुंह में पानी ले ही अंदे था हाँ भी
1: जी
0: कोशिश ये रहती कि जरूर हम भी थोड़ा दिया चटाका लगाई लेना
1: हाँ,
0: जी
1: कुछ नो कुछ बोलते हैं नया भी ट्राई करना चाहिए था ना
0: जी तसे ता मैं सही तो बोल रही थी कि से यहाँ पर निर्भर करता कि यहाँ कितना कि आप पियो सफलता दी और लेकर जानते हैं ना
1: हाँ जी
0: यही नहीं है कि यहाँ ठीक है यहाँ जॉब करा देना तीसरी मेहनत करनी है खाना तो हाँ बना देना तीसरी भी मेहनत लगती है कि किस तरीके ने
1: बिल्कुल
0: तो हाँ तीस जो बना देना और बेहतर बनाने की कोशिश करा देना जी
1: जी
0: इसी करने अगर हाँ सिलाई की गल करिए तो तीसरी भी बड़ा ज़्यादा मेहनत लगती
1: जी बिल्कुल हाँ
0: क्योंकि नए नए डिज़ाइन तो हाँ सीख देना
1: जी
0: कने ज़रूर नए नए जड़ा डिज़ाइन ताई तो हाँ तीना जो बेहतर तरीके ने एक सिंपल सूट जो तो हाँ डेकोरेट करी देना जी
1: हाँ जी
0: जी
1: बिल्कुल
0: दीदी शोभा और बड़ी आंदी है तिने अगर हाँ
1: हाँ जी
0: खाने दी शोभा बढ़ानी है तो दीदी वास्ते यहाँ यो नई नई
1: हाँ जी
0: जड़ा रेसिपी आन तिना जो सीखना चाहिए कने खुद भी सीखा कने बाकियां जो भी सीखा
1: बिल्कुल जी
0: जी
1: दिखा सिंपल ही दाल चाहिए दाल कितनी स्वाद बनी
0: जी ज़्यादा नॉर्मल तिश है नहीं कि ज़्यादा तो
1: हाँ
0: हाँ तिश
1: जी
0: मेहनत
1: ज्यादा मेहनत
0: करती
1: भी नहीं है
0: जी
1: ज्यादा मेहनत नहीं है शॉर्टकट ही है जल्दी मतलब 2 मिनट तुड़के भी 2 मिंट लगते उसी हो
0: जी जी
1: उबालनी है बस कोई ज्यादा मेहनत नहीं है
0: जी जी जी तो
1: जी
0: तुहानी बनाए आज पतरोडू
1: हाँ नहीं मनाते अच्छ पत्रोड़ो हाँ क्या ये संक्रांति नहीं मनाते ना
0: जी जी अगली
1: बोलते
0: बनाए
1: मेरे सोर एक्सपायर हुए ना
0: जी जी
1: हाँ नहीं मनाते पर हाँ जी पत्रोड़ बना तो हम संक्रांति के अगे पीछे मना लेंगे
0: जी जी चलो अच्छी गल है जी
1: हाँ
0: नेचुरल
1: जी
0: चीजा है ना जी
1: हाँ जी ये तो मैं 2-3 बारी बनाई बैठी
0: जी जी
1: हाँ जी
0: जी तो इंदु जी आज तो हाँ कुंतिया गीत चिड़े से सुनना पसंद करके
1: आज सुनाई दिया बलोचनी वाला
0: जी अच्छा जरूर ये गीत ये फरमाइश तुह तक पहुंचा दें जी जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहदा
1: तुम्हारा बड़ा बड़ा धन्यवाद जी
0: जी अगले जरा श्रोता है ना से जरूर अह कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गल बात हेलो जी
2: मैडम
0: मुबारक जी तो
2: जोड़ू
0: तुम्हें भी बड़िया सारिया मुबारक जी
2: संक्रांति
0: जी यही कामना कर देना जी सारे की कोई भी
2: हाँ
0: त्योहार
2: जी हाँ जी
0: जैसे
2: हाँ जी मैडम जी खुद की बरसात हो रही कल सुख शांत त्यौहार होता ठीक लगता ना
0: जी जी
2: हाँ जी
0: जी ता हाँ यही गल बात करा देते कि त्योहारा बनाने दा क्या मतलब मकसद है हाँ दा कि यहाँ हर दिन त्योहार बनाते ना
2: मैडम जी नहीं आंदा ना कि पूरी बरसात कटनी ना
0: जी
2: सुख शांत मान भी तीन लोग पहले पहाड़ च जाते हैं धारा च
0: जी
2: सुख
0: जी
2: शांति का रह जा माल तो सुख
0: जी
2: शांति प्रेरणा कर दे कोई मारा माल कियां जी ओदी वापस
0: जी
2: आई है ना
0: जी
2: इसे खुशी उपलक्ष विच मनांदे ने त्यौहार है
0: जी
2: पिछला मनांदे चीन नहीं ना चीन फूकने तुम्हें
0: जी
2: मनानी है रोटियां रखनिया
0: जी
2: कनाजे जोड़ पतरोड़ू पहले
0: जोड़
2: सियाने बोलते हैं जोड़ा बनाना पतरोड़ा बनाना
0: जी
2: पूरे
0: जोड़े
2: पिछा खाई
0: दा
2: लेना ही एक लोगों होंगे समान मैडम
0: जी
2: जी
0: जी जी ता जोड़े दा
2: हाँ जी
0: क्या मतलब है मतलब
2: जोड़ा मतलब नहीं डंगा डोरा बात है ना जोड़ा जोर मनाते हैं ना प्राचीन काल से चले आए ने सभ्यता
0: जी जी
2: मैडम 1,000 साल होंगे है ना अपना
0: जी
2: हूं तो अच्छे लोग प्लास्टिका लिया
0: जी
2: बस मना देने पहले पहले बजुर्ग होंगे बरखा में नहीं होंगे जोड़ा मनाना कहना वो आज पतोड़े प्याड़े मना अज
0: जी अच्छा जोड़ा भी बनाना अपने
2: खाई लाने ना मैडम जी
0: जी जी
2: हाँ जी
0: जी चलो
2: और
0: बड़ी
2: तो
0: अच्छी
2: दूर आने
0: जानकारी
2: वाले भी तो पतरोड़े दे जाने दे आज मैं
0: जी ता आज
2: और
0: क्या
2: दूर है
0: कि तो
2: ना
0: हाँ जड़े से पकवान बनाई ले ओ बनाई ओ
2: हां जी परोड़े बनाने में जी तोनी रोटियां बनांदे अपना बनांदा ना
0: जी अपना अपना
2: हां जी कदे मैडम बरसाती तैयार होंदे ना होंगे बिठे करदे ना मैडम जी
0: जी जी
2: हां जी
0: याला माहौल होंदा ना जी
2: हां जी हां जी मैडम जी सब बताना अपनी पुरानी
0: जी जी
2: हां जी
0: एई ता जो अपनी संस्कृति कने जोड़ी के रख दी ना
2: वो बिल्कुल मैडम जी बिल्कुल तो आप बोलना मेरे तो रिश्तेदारी तने बारी में थाने अगले पे रेडियो लिया तो अगर दे चांद प्रोग्राम होंदे गुंजन दे तो सारे मैडम जी ले लियो मेरी दीदियां क्या सारे ले लियो मैडम जी
0: जी धन्यवाद जी
2: तो मेरा काम होया मैडम जी ना मैं तो सारा दिन लाइक बनाए लंदे थोड़ी ये एक फोन कमरे के बैठे में तो लगे होता एक बोली लगे होता मैडम वगैरह सुननी है ना
0: जी जी
2: भरे गाने कोई देशभक्ति गाने क्या मजा
0: आंदा
2: सारे मारे सारे लगाई लियो
0: जी ता राकेश जी आज तोहा कुंदिया गीत जेड़ा इसे सुनना पसंद
2: आले नाम सुनना मैं तंबिया गीत दा तंबा ते चोवाड़ी
0: जी गड्डी चली चंबा
2: बड़ा नाम जी
0: जी जी
2: मैं तोहा बड़ा आदर धन्यवाद जी
0: जी तोहा दा भी बड़ा बड़ा धन्यवाद
2: कोई बढ़िया बढ़िया मुबारक है मैडम जी आज
0: जी तोहा जो भी
2: अच्छा मैडम बड़ा धन्यवाद तोंदा
0: तशो तो वहां भी अपनी सफर जो आगे बढ़ान दे ने कने तोहा जो लेकर चल दे ने अगली फरमाइश दी और

ही घूमी आइए, जैसे मंदिर मंदिर च हर जगह लंगर जेड़ा न से जरूर लगे न, रौनक जेड़ा ऐसे लगी हुए हर जगह। तो ऐसी कने यहाँ भी अपने कार्यक्रम दे सफर जो थोड़ी देर रौनक लगा देना, कने तो हम जो लेकर चल देना कांगड़े दी ओर। उन तो हाँ सोचा दे होने ने कि कांगड़े दी ओर कयो लेकर चलियो न, हाँ ताई लेकर चलियो कि यहाँ जो फरमाइश जड़े से कांगड़े ते आई हुए, करे तिना दा नाव है पवना जी। तो ज़रूर इसी करने तो हाँ कांगड़ा मंदिर भी घूमे हुआ, कने इस गीत जो भी ज़रूर इंजॉय करा।

गुंचन धर्मशाला ते कने तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपने रेडियो दो शशि कने इसी कने हाँ फ्री ते वापिस आई हो ना अपनी गलबात ऊपर कने तो हाँ भी मेरी गलबात कने जरूर जुड़ी होने न कने इसी कने आज जड़ा हाँ खास दिन बना देन सभी अपनी संस्कृति दे जुड़ियो क्योंकि कुथी ना कुथी ये जड़ा संग्रांत है या जड़ा त्यौहार हैं से अहां जो अपनी जड़ा परंपराएं तिना कने जोड़ी के रखते है यहाँ दे जड़ा पशु हैं तिना दे स्वास्थ्य दी रक्षा या वर्षा ऋतु दी बधाई या अच्छी जड़ा फसल है तिस दी कमाई अच्छी फसल दी यहाँ जड़े से हमेशा जड़ा प्रार्थना कर दी न कि यहाँ दी जड़ा फसल है से अच्छी होवे कने जड़ा पतरोड़े न से जरूर अहां अरवी दे पत्तियां दे भी बनांदे कने जड़ा कचालुआं दे न से नेचुरल ते दे भी अहां जड़ा पतरोड़े न से जरूर तो हां सारे भी बनांदे होने न कने जरूर तीस दी जड़ा रेसिपी है जड़ा मौसम थोड़ा देर चेंज होंदा है बरसात दा मौसम चलिया होंदा तो मन भी अहां दा करदा है कि कुछ नए जड़ा पकवान है से जरूर अहां खान तो जड़ा अरबी दे पत्ते न या कचालू दे पत्तर आ ना तिना जो लेंदे न फिर तिना जो धोई धोई करी जड़ा बिल्कुल साफ करी करी पहले हाँ पेस्ट बनांदे नी दा चनिया दी दाली दा कने जड़ा चौलां दा जड़ा आटा है तिदा जड़ा पेस्ट है से हाँ जड़ा चने दाली दा कने जड़ा चौलां दा है से हाँ मिक्स करी दे न कने बाकी जड़ा प्याज है लसन है से मिक्सीच करा ग्राइंड या जड़ा कुंड है तिस भी तो हाँ ग्राइंड जड़ा चुत्थी सकते कने इसी कने तिस जो मिक्स करी करी जड़े से पत्ते न से कुछ बड़ा बर्तन जड़े से ले लिया तिना पत्तियां जो रखा कर ती ऊपर जड़ा पेस्ट है उस जो लगाते चला कने एक एक पत्ता जड़े से रख दे चला जितना कि तुम्हें लगता है कि हाँ जो चाहिए उतना कि तो हाँ तिना पत्तियां जो फिर रोल करा कने उसके बाद जड़ा हल्दी दे पत्ते न ती ऊपर जड़े ते तिना जो लपेटी दिया फिर जड़ा पतरोड़ू हैं तिना जो तो हाँ स्टीम देनी है तो तीदी वास्ते तो हाँ सारे जो पता है वैसे तो हाँ सारे ही समझदार हैं पर जरूर हाँ जड़ा रेसिपी है से तो हाँ तक पहुँचाई थी है कने फिरी मुझे लगा था तो हाँ दे मुँह में पानी जड़ा से जरूर आई होने वैसे तो हाँ खा दे ही होने न इसी कने हाँ फ्री थे अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न करे तो हाँ जो लेख रही चलते न अगली फरमाइश की ओर सुनते नहीं सब प्यारी दिया फरमाइशा जो

श्रोताओं तो सारे सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दे फरमाइश ये फरमाइश अह जो आई हुए इंदू जी की कने से रहने वाले ने सिद्धबाड़ी ते तो जरूर तिना तक कहाँ ये फरमाइश पहुँचाई कने अगली जड़ा फरमाइश है सभी तुह तक पहुँचा देना।

0: कशो तो अगले जड़ा श्रोता ने से जरूर अहा कने जुड़ चुके हैं कने तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी फरमाइश। इस गीत की फरमाइश जहाँ तक पहुंची हो वह खनियारा थे कने तिना दा नाम है चरणदास जी। अगले जड़ा श्रोता ने तिना कने कर देन गल बात। हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहांदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च। ठीक ठाक है ना?
1: हां जी ठीक ठाक
0: जी। ता पहले तो तुहां जो नाग पंचमी दिया कने जोड़वे पतरोड़वे दी संगरांद है, बड़ियां सारियां मुबारकां हों जी।
1: हां जी जी मुबारकां, गुंजन नाले मुबारकां पहले होना चाहिए।
0: जी जी जरूर जी। जी ता जी तुहां कुत्थों ते बोला दे कने तुहां दा नाम के जी?
1: मैं चमंडा से बोला था जी, सुभाष जी।
0: जी चमंडा से बोला दे सुभाष जी। ता सुभाष जी चमंडा ता बढ़िया रौनक लगी है ना जी?
1: हां हम तो हां पता है मेले लगे और रौनक लगी है माता दे।
0: जी गुप्त नवरात्रे लग गए ना जी?
1: हां जी हां जी
0: जी। कने इसी कने मेले भी लग गए?
1: हां जी
0: जी जी। ता तोहा क्या आज जेड़ा संगरांद है या नाग पंचमी है तिदे ऊपर क्या विचार युवा पीढ़ी तक या बच्चे तक पहुंचाना चाहेंगे?
1: नाग पंचमी तो मनाना ठीक है, नाग पंचमी जरूरी है।
0: जी जी
1: जी।
0: कने जेड़ा संगरांद हां बना देन आज
1: ये भी जरूरी है। संगरांद तो हुण साले दे एक बारी आउंदी है जी।
0: जी जी साले दा एक बड़ी त्योहार होंदा ना जी?
1: हां जी हां जी
0: जी। कने अजे ते बड़ा महीना भी शुरू होई है ना जी?
1: हां जी हां जी
0: जी जी। तो तिस बनाने दा क्या मकसद है मतलब?
1: इस मतलब जी मैं भी नहीं जानदा पण भाई संगरांद शुरू के सियाने मनांदे आए ता गांव आ भी मनाई लंदे।
0: जी मेन ता ए ये कि जिन्ना बरसात दा मौसम चल्या होंदा ता कई हादसे हो जांदे या हमेशा हाई कामना करदे कि सारे जेड़ा ने से हमेशा सुखी रहन, परिवार जेड़ा से सुखी रह कने तंदुरुस्त रह ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। कने जेड़ा बड़ा महीना है जेड़ा बरसाला दे भी जरूर सारे ही हुन जितनियां भी नोइयां नोइयां
1: जी जी आजकल नवा है वालियां गए हुन चौकियां ने आ जानियां ना।
0: जी जी ता जी ता
1: बोला सा सुनो चौकी नहीं रहनी है।
0: जी जी
1: जी।
0: ता ए परंपराएं न ये रीति रिवाज न से कुथी न कुथी यहां जो अपनी संस्कृति कने जोड़ी के रख देना जी।
1: हां जी लिटा रिवाज अन्न कने गा पता नहीं होने नहीं होने।
0: जी चलो अहां दी ता कोशिश यही रहंदी है कि गा तक भी यहां पहुंचान ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी जी। कोशिश जारी रहनी है क्योंकि जालू अहां
1: कोशिश जरूरी है।
0: जी जी कोशिश करना सही है ना कि कोशिश करने वाले दी कभी हार नहीं होंदी ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। क्योंकि अहां जो भी अहां अपने जेड़ा घरे दे बुजुर्ग हैं माता पिता ने तिना ते ही सिखदे ना जी।
1: हां जी हां जी
0: से अहां जो सिखान दे ना कने अहां भी यही कोशिश कर दे ने कि चलो जेड़ा ज्ञान अहां ले से अहां तिस जो और विस्तार करने सारे तक पहुंचान ना जी।
1: हां जी हां जी
0: जी। क्योंकि जितना अहां बोल दे कि जितना अहां बंडन उतना ही अहां जो मिलदा ना जी।
1: हां जी
0: जी। चाहे से कोई भी चीज है, चाहे अगर तो हाँ किसी ने प्यारे ने गल कर देन या किसी दी मदद कर देन से यहाँ पर निर्भर करता ना जी।
1: बिल्कुल जी
0: जी। तो समय बड़ा थोड़ा दिया है जी आज।
1: जी
0: जी। तो जुड़ने वास्ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी। आज तो हम फरमाइश जड़े से मुझे लगा था नहीं पूरी होंगी आज।
1: कोई गल नहीं जी, तो आड़े के नकल बात कर ले बड़ी बड़ी।
0: जी धन्यवाद जी, जुड़ने वास्ते
1: धन्यवाद जी।
0: जी श्रोताओं अहाँ भी तुहन जो लेकर चल देन अगली फरमाइश की ओर। ये फरमाइश अहाँ पहुँचा देन राकेश जी तक, तो जरूर से रहने वाले नरवाणा ते तुह सारे भी इंजॉय करा।

यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: स्कूल में क्या सीखा?
1: मछली जल का रानी,
0: जल का नहीं जल की,
1: जीवन उसकी पानी
0: उसका।
1: पापा पापा दूध उबल रही है।
2: उबल रहा है रहा।
1: चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चटाया।
3: चटाई?
1: ओहो दादू इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
4: बेटा खाया नहीं खाई।
1: ओके ओके मम्मी लाइट चला गया।
0: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
2: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
1: वो तो आ गई।
0: आ गई नहीं लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया है, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी?
9: अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे।
12: बुलाओगे ना शुक्ला जी?
13: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
13: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
14: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
15: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
16: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बता ही दो, एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा?
17: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं, आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका
2: पापा पापा दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है रहा।
2: चंदू की चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा।
4: छताई।
2: ओहो दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं खाई।
2: ओके ओके मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई, मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे, तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे, ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
10: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते हैं लोटा लेके।
12: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
13: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
14: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
15: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
16: मैं तो बुरी।

नमस्कार शोर 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहा और आओ तुंद अपना होस्ट और दोस्त सचिन कपूरा तुंदे रेडियो सेट मा हाजिर। क्या हालचाल चाल रशो तो तुंदे उम्मीद करनो सभी रे हालचाल भी ठीक हुए और सब सुख शांति होगी अपने अपने घर रेहो भी करते हुए। आइए श्रोतो कार्यक्रम मंच तो है सब भी जुड़े गच्छा जल्दी हूँ जल्दी और आगाज कर लेंदे ने कार्यक्रम रा इस प्यारे दे गीत दसोगे हूं देने प्यारे दे गीत

अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोतों और आउतुंद अपना सचिन कपूर श्रोतों आज कार्यक्रम मंच आसू गल करने क्या है हेल्थी फूड के न सो रोजमर्रा की जिंदगी है लंदे भी ने या फिर है सिर्फ गल्ला होंदे ने या गल्ला करते ने हेल्थी फूड लेना जिंदगी अंदर बहुत ज्यादा मायने रखता श्रोतों मेरे आज गल याद रखे की जीत अगर तू है कमाओ कर देना तो तू सू पुछने आला है लख मनु गुणे ने जदैरी तुंदे अंग भा जदैरी तुंदा शरीर छड़ी गोना तैरी तू सू कसी बिना पुछना हेल्दी फूड क्या क्या बनता है जो स्वास्थ्य आहार जैसी बनता है सो क्या किया सो तुसो जरूर आऊं दसला पर हुन लंदन प्यारे दे गीत

91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सभी ट्यून कर रहा है। कार्यक्रम में इस वक्त हिंदी अपनी गपा तुम्हें रेडियो सतमा चल रही है। शो तो कार्यक्रम मंच गल बच्चों कर दे स्वास्थ्य आहार रे हेल्दी फूड रे शो तो हरी सब्जी सब्जियों पहले था जितनी बुझी सकती तो उन्हें हरी सब्जी खाओ करा लेकिन अपनी लोरी खाओ करा कजो की बाजार अंदर तुझे पता बिकती तो हिन्न लेकिन तती अंदर बड़े बड़े टीके के ना सो भी लगे अंदर अपनी बूंद अपनी जरूर खाओ करा शो तो नहीं तो बाजार तो फिर अवेलेबल ही हरी सब्जी बहुत ज्यादा जरूरी न खाना शो इसी सो की शो तो फल खाओ करा है ना फ्रूट जिस अंग्रेजी अंदर बोलते फल खाना बेहद ज्यादा जरूरी न अगर अपना शरीर तुसु हस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखना तो आइया कार्यक्रम जो हगो बढ़ेंदे और हूं प्यारे दे गीत

सामुदायिक वेड़ी गुंजन तो है सभी ट्यून को हुआ FM 91.2 MHz पर और सचिन कपूर सो गए तो है सब श्रोता बन रहे समय कई मनो बंदे ना कि गर्मी बुझ गंदे ते खाना छड़ी देन है ना या फिर सियाने के या सिन जो खाना छड़ी देन सो तो यह गल जो मेरे तो है जरूर अपनी गठड़ी अंदर बनने लिया कि खाना ना छड़ना बिल्कुल भी अनाज क्या सो बिल्कुल ना छड़ना सो तो अगर तो है अनाज छड़ी था खाना छड़ी था तो शरीर छुट दे देर ना ले गौ बोआ ना बोआ अख दो फुल कह गया ना सो डिक्के लेने पेट अंदर भोजन खाना क्या सो ना छड़ना सो तो शरीर बड़ा बड़ा और शरीर ही तुम्हारा सच्चा साथी है शरीर ही तू होगी हमेशा रहा और जे तक तो है खरे ने मनु खरे जो तेरी तो है ढहे गया तेरी मनु भी किया सो मुंह मोड़ लैन आइए शो तुम कार्यक्रम ही चलना हूं दे प्यारे दया गीत

इतना अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और सचिन कपूर अपना रेडियो दोस्त शो तो दूध पीना बेहद ज्यादा जरूरी है। पनीर खाओ करा, दही खाओ करा शो तो है ना, ये सब चीज रखे ना बेहद ज्यादा जरूरी शो तो कार्यक्रम में चलते रहना शो तो। आइया कार्यक्रम में छोड़ देने प्यारा दे गीत।

सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी है ट्यून कर रहा और कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है इंदी अपनी गप्पा रेडियो सेट पर आया कार्यक्रम जो आगू बढ़े और कार्यक्रम श्रोताओं होंगे ने प्यारे दिया गीत।

श्रोताओं रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ये सभी ट्यून कर रहे और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा दुंदे रेडियो सेट में चल रही है। श्रोताओं कई वक्त है अपने ऑफिस जो लेट बुझ गए, अपने स्कूल जो लेट बुझ गए, जो इनकी ड्यूटीज में अपनी अपनी तथियो लेट बुझ गए, झटफट झटफट खंदे श्रोताओं तीन बिना खाना चिंता आराम में होगी। 10 मिनट पहले उठी लिया है ना या बैगा धोले उठ करा ताकि फूड के आसो अच्छी तरीके होगी तुम्हें पेट अंदर गच्छा और तुम्हारा पेट क्या सुखा रह रहा है ना। अंडा की श्रोताओं झटपट बढ़ने वाली चीज है, अंडा जरूर तो है खाओ कर, अंडा की सो तो है जरूर खाओ कर श्रोतो, अंडा भी सेहत वास्ते की सो बेहद अच्छा बुंदा श्रोतो। इसी जो की श्रोतो पपीता की सो अगर उठ गए तो है खा सकते, अगर आदत था अगर नहीं आता भी पा लिया पपीता खाली पेट खाना सभी ज्यादा अच्छा मानने की जरूर है श्रोतो का ना। पनीर की श्रोतो पनीर भी नाश्ते अंदर की आख सेहतमंद चीज मनने की छोरे की पनीर भी किया सो खाना चाहता सो ब्रेकफास्ट में। बहरहाल तो सब याद रखा अगर कुछ खरा होने तो सो होने सचिन कपूर सोगी कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा दें वीडियो सेट में।

रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा दुंदे वीडियो सेट में इस वक्त चल रही ने श्रोताओं आया कार्यक्रम जो हगो बड़न दिन और हम दिन कार्यक्रम से प्यारा दिया गीत

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर है रेडियो गुंजन, तो है सब ये ट्यून कर रहे और रेडियो दोस्त सचिन कपूर सो के तो है सब बन बन शतम वाल दिन दाली रा सूप किया सो भी पियो करा ठंडी ठंडी अंदर खराब हुंदा है ना। दाल भी किया सो जरूर खाना चाहिए दे शो तो है ना। जो कुछ मुड़ेगा छा ना पुराने मन क्या बंदे थे ये शो तो जो कुछ मुड़ेगा छा ना सो खाई लेंदे थे एनी री भुजड़ी बुच गई और छली री रोटी बुच गई है ना। ऐसी ऐसी चीजा पुरानी चीजें जो की सो खाई लेंदे थे लेकिन अचकनी रेट में अगर है गल कर छली रोटी का असू कसियो भी ना पता तो चलो त्यार है तेने काम भी थी अभी तेने काम भी नहीं है ना। सो खड़े खड़े पहाड़ा भी लंघी गंदे थी है असू तो खड़ा पहाड़ बली दिन तो दो ही महीने लगा लंघते लंघते सो कि दिन लंघी गंदे थी है पुरानी भी गप्पा गे लानी पुरानी तो ओल्ड इज गोल्ड सो कहावत बिल्कुल ठीक है। सो तो हूं देने प्यारे दे गीत

समुदायिक वेड़ी गुंजन धर्मशाला और आऊं सचिन कपूर तुंदे अपने वेड़ियो गुंजन मा शोदो वक्त बचुगा तो सुसभी थो अलविदा लेने रा तो सुसभी और टाटा बाय बाय बालने रा लेनो इजाजत धर्मशाला जो स्वच्छ रखा धर्मशाला जो साफ सुथरा रखा हुन देरे वेड़ी गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पनारी।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पेंशनरों को 15 से 35% चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसी माह 20,000 एरियर। विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से होगा शुरू। 900 से अधिक सवाल पहुंचे धर्मशाला में, स्थापित होगा प्रदेश का पहला रिमोट सेंसिंग केंद्र। पटोला मैदान बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास की सौगातें देते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए आज 27 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। उन्होंने संयुक्त कार्यालय भवन नेरवा जिला शिमला के लिए 2 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन चौपाल के लिए 3 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन कुपवी के लिए 2 करोड़, दुग्ध अभिषेकन संयंत्र नेरवा के लिए 2 करोड़, नेरवा बाईपास के लिए 4 करोड़, लखावटी पुल के लिए 12 करोड़ तथा छवाला चौपाल जलापूर्ति योजना के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता रजनीश किमटा, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा तथा चौपाल नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष चंद्र मोहन ने चौपाल क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, लोग इन परियोजनाओं का लाभ उठाकर धन एवं समय में बचत कर पाएंगे तथा उनका रहन सहन सुगम होगा। 2. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की 25 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का मंडी के पटल मैदान से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने HRTC के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के लिए नई 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की है। नई इलेक्ट्रिक बसें वर्तमान में शिमला, नाहन, नालागढ़, ऊना, हरोली, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पलमपुर, धर्मशाला तथा नगरोटा में संचालित की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त कुल्लू, मंडी और सुंदरनगर में भी आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जा चुकी है तथा इन क्षेत्रों में नई इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन भी शुरू किया गया है। श्री सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से एचआरटीसी की परिचालन लागत में भी महत्वपूर्ण कमी आ रही है। पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ऊर्जा लागत में लगभग 12-13 रुपए प्रति किलोमीटर की बचत हो रही है। इससे निगम के ईंधन एवं परिचालन व्यय में कमी आने के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की समग्र दक्षता में भी सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का ये विस्तार प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने तथा स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के निरंतर सहयोग तथा चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के साथ एचआरटीसी राज्य में आधुनिक, विश्वसनीय, ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। 3. सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 1250 KVA रक्कड़ बल्ला, 2250 KVA दरुनी माता, 3100 KVA फतेहपुर -44250 KVA सिद्ध बड़ी 4 आदि ट्रांसफॉर्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों रक्कड़, दरुनी माता मंदिर के आसपास, परमार हाउस के पास, पीटी हॉस्टल गुरुद्वारा रोड आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पुनर्तः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। 4. वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मियों और पारिवारिक पेंशनरों को नया वेतनमान लागू होने के बाद संशोधित पेंशन के एरियर का अतिरिक्त 35% इसी माह भुगतान किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी 15% एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह संशोधित वेतनमान के एरियर के रूप में अतिरिक्त 20,000 रूपए सैलरी के साथ मिलेंगे। इस पर सरकार 281 करोड़ रूपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे। सीएम ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी नीति बनाने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 CBSE स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक कोई भी चिकित्सक सेवानिवृत्त नहीं होगा। 5. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा। 14वीं विधानसभा का ये 11वां सत्र होगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में अब तक विधायकों के 900 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। विधायक 18 अगस्त तक अपने प्रश्न भेज सकेंगे। प्राप्त प्रश्नों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके जवाब तैयार करवाए जा रहे हैं। मंत्री इन प्रश्नों पर प्रश्नकाल में जवाब देंगे। प्रश्नों में भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायकों के सवाल शामिल हैं। 6. राज्य का पहला रिमोट सेंसिंग एवं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम केंद्र धर्मशाला में करीब 19 करोड़ रूपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित होने वाले इस हाईटेक केंद्र के जरिए प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। केंद्र के माध्यम से मौसम, भूमि, फसल और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। ये डेटा विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनेगी। 7. महान स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर की स्मृति में खनियारा के पटोला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हुआ। रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंदुनाग फुटबॉल अकादमी खनियारा ने शाहपुर की टीम को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विजेता टीम को 11,000 रूपए ट्रॉफी तथा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, जबकि उपविजेता टीम को 9,000 रूपए उपविजेता ट्रॉफी तथा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक सुधीर शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रवीण प्रकाश के आग्रह पर क्षेत्रवासियों और खिलाड़ियों के हित में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पटोला मैदान को फुटबॉल स्टेडियम के रूप में विकसित करने, दर्शकों के बैठने के लिए मैदान में कैनोपी, पूर्व निर्मित ढांचा स्थापित करने तथा टूर्नामेंट आयोजन समिति को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
पटोला मैदान को खेल सुविधाओं से विकसित किए जाने से खनियारा और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिलेगा तथा फुटबॉल को नई पहचान और नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों इस गीत के बाद एक बार फिर से वापस आ रहे हैं कार्यक्रम में। बिल्कुल दोस्तों, और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने, और आज का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को सुनाते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, नए हो या पुराने, हर गीत में छुपी है एक कहानी और वो कहानी छू कर जाती है हमारे दिलों को, हमारे दिलों के जज्बातों को, हमारी रूह को। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

तो रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर में आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

दोस्तों, वो जमाना, वो आवाजें और आज के सुर सब एक साथ, गीत सुहाने नए पुराने। दोस्तों, कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों, ये नए पुराने गीत हर शाम, हर दिन, हर सुबह को बना देते हैं खास। सुनिए इस प्यारे से कार्यक्रम को, जहां हर गीत है यादों की सौगात। बिल्कुल दोस्तों, आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

दोस्तों इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ और अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों। गीत सुहाने, नए पुराने।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर बहुत ही मधुर और बहुत ही प्यारा सा आप सभी एंजॉय कर रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ से अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

दोस्तों, जब भी मन चाहे आपका सुकून, तो जुड़ जाइए नए पुराने गीतों के इस सफर के साथ। नए गीतों की ताजगी और पुराने गीतों की मिठास एक साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों, गीत सुहाने नए पुराने, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम हो गई है श्रोताओं, और आज आपने आज के दिन को बहुत अच्छे से मनाया होगा, और आज क्या ख़ास है इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन शाम ढलने लग पड़ी है, हल्की हल्की बारिश की फुहारें जो हैं वो पड़ रही हैं। तो श्रोताओं, शाम के 6 बज गए हैं, और अब मैं यानी कि आपकी रेडियो दोस्त हाज़िर हो चुकी है स्टूडियो में लेकर कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। तो जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं, अपना रेडियो सेट ऑन कर दिया है और हमारे साथ ट्यून इन है, उन सभी का स्वागत करती है रेडियो गुंजन धर्मशाला में आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा। सबसे पहले सभी श्रोताओं को सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे श्रोताओं, और आपको बता दें 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमीरपुर के ढेटवाल की आवाज़ पर भी आप हमारे साथ इस समय जुड़ सकते हैं। तो हमीरपुर के श्रोताओं को भी तहे दिल से उनका भी स्वागत है कार्यक्रम में, और उनको भी गुड इवनिंग नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अब से लेकर रात के 8 बजे तक चलेगा, और इस कार्यक्रम में रोज़ाना की तरह हम करेंगे आपके साथ बातचीत और साथ ही जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे। और आपके मनोरंजन के लिए लेकर आते हैं हम प्यारे प्यारे गीतों की माला, तो आज भी वो माला पिरोकर लेकर आई हूं मैं आपके लिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत रोज़ाना की तरह करते हैं विचार के साथ। श्रोताओं, धर्म का मार्ग कठिन ज़रूर है, लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही है। और धर्म से जुड़े काम आज हमने बहुत सारे किए। खैर, सावन का ये महीना लगा है और इसमें धर्म के काम तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन धर्म कर्म आज कुछ स्पेशल था, बहुत अच्छा दिन रहा। और क्या कुछ खास रहा उसके बारे में बात ज़रूर करेंगे, और बातों से जुड़ने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ, और इस गीत को हम लेकर आए हैं संग्राम फिल्म से। अलका याग्निक की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है इस समय आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला की शुरुआत हमने कर दी है इस प्यारे से गीत के साथ। और श्रोताओं, आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत आपको आज ज़रूर सुनवाए जाएंगे। खैर, हम रोज़ ही गीतों का ये जो पिटारा है ये लेकर आते हैं और आपके समक्ष रखते हैं प्यारे प्यारे गीत। शाम का ये समय होता है श्रोताओं, और हम अपने अपने काम से थोड़ा सा फुर्सत के पल जो है इस समय थोड़ी देर के लिए बिताते हैं, क्योंकि खैर घर में तो फुर्सत नहीं मिलती क्योंकि काम हमारे कभी ख़त्म नहीं होते। लेकिन फिर भी रेडियो गुंजन धर्मशाला की ये जो गूंज है कभी कभी हमें काम करने में हमारी सहायक बनती है, क्योंकि काम करते करते ये प्यारे प्यारे गीत जब कानों में पड़ते हैं तो काम करने का अपना ही मज़ा होता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले अपने श्रोताओं को नाग पंचमी की और संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं देंगे। श्रोताओं, आज घर घर में बहुत सारे पकवान बने क्योंकि आज संक्रांति का त्यौहार भी था, और जो लोग हिमाचल में धर्मशाला के आसपास कुछ एक हिमाचल के कुछ एक क्षेत्रों में जो है ये संक्रांति का जो उत्सव है ये मनाया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है, और आज के दिन हर घर से हर किचन से बहुत ही प्यारी महक आती है क्योंकि आज बहुत सारे पकवान जो है वो घरों में बनाए जाते हैं। और ख़ास पकवान की हम बात करेंगे कि आज स्पेशली पतरोड़ू जो है वो बनाए जाते हैं, और आप सभी के किचन में भी आज ज़रूर बने होंगे, आपने खाए होंगे, और सच बताइए तो आज आप लोगों को बिल्कुल भी भूख नहीं होगी क्योंकि आज आपने उस भोजन का आनंद लिया है जिसका हम आज के दिन लेते हैं। और श्रोताओं, साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो संक्रांत होती है ये शुरुआत होती है काले महीने की, काला महीना जो है वो आज से शुरू हो जाता है। और हिमाचल की अगर बात करें तो यहाँ का जो एक नियम है, एक रीति रिवाज है, आज के दिन जो है नवविवाहिता जो बहुएं या बेटियां होती हैं वो अपने अपने ससुराल से अपने मायके आती हैं और एक महीने का ये जो समय है अपने परिवार वालों के साथ वो बिताती हैं। और नेक्स्ट मंथ जो एक और संक्रांत आने वाली है जिसे हम कहते हैं सैर की संक्रांत, उसे खाने के बाद उन्हें उनके ससुराल छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज सभी के घरों में रौनकें लगी होंगी और नवविवाहिता जो हमारी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो ज़रूर आज अपने मायके आई होंगी। तो श्रोताओं, इस प्यारे से उत्सव को आप सभी मनाइए, और कहीं ना कहीं एक मौका हमें मिलता है, एक बहाना हमें मिलता है एक दूसरे के साथ बात करने का, मिलने का, और अपने जो हसीन पल होते हैं जो हमने बिताए होते हैं उन्हें याद करने का। तो ऐसे मौके हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए श्रोताओं, और जब भी मौका मिले अपनों के साथ समय हमें बिताना चाहिए। तो भाई, ये जो संक्रांत है इसके बारे में भी आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे, और साथ ही नाग पंचमी की भी बात करेंगे। श्रोताओं, मंदिरों में वैसे भी सावन का ये महीना चल रहा है और शिव भोले भंडारी के मंदिरों में जो रौनकें लगी हैं वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि एक तो आज सोमवार है, दूसरा सावन का मंथ चल रहा है, और तीसरा आज नाग पंचमी है। तो शिव भोले भंडारी से हम यही कहेंगे कि हमारे सभी श्रोताओं को तंदुरुस्ती दे, उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हों, और बाकी बातों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए फिर से आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारे से गीत की ओर। श्रोताओं, आई मिलन की रात, इस फिल्म का गीत अब आप सभी तक पहुँचा रहे हैं मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून इन किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला के साथ। इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं श्रोताओं, और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सुषमा। एक बार फिर से बता दें श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रहता है रोज़ाना शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का, और इस समय में हम आपके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, जानकारियां भी आप तक पहुंचाते हैं और प्यारे प्यारे गीत तो हम लेकर आते ही हैं। तो श्रोताओं, इस गीत से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे संक्रांति की, तो इस आज की जो संक्रांति, जिसे हम अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, इसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है। और साथ ही श्रोताओं, हिमाचल की संस्कृति की खूबसूरती यही है कि यहाँ त्यौहार केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते, इनके साथ जुड़ी होती है प्रकृति, मौसम, खेती, खान पान और साथ ही लोक विश्वास और परिवार की परंपराएं। बिल्कुल श्रोताओं, और संक्रांति का सीधा अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना। इस दिन सूर्य जो है वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसे सिंह संक्रांति भी कहा जाता है, और उसे आज सभी लोगों ने ज़रूर बड़े ही खुशी के साथ मनाया। साथ ही

बताऊँ, जैसे कि आपसे कहा कि काला महीना जो है वो शुरू हो गया है, और आज के दिन जो है नववाहिता जो भी होती हैं, जिनकी नई नई शादी हुई है, वो अपने ससुराल से मायके 1 महीने के लिए आती हैं। लेकिन साथ ही श्रोताओं, आपको बता दें कि पंजाब में वहाँ पर इस महीने को नहीं माना जाता, वहाँ पर माना जाता है लहरा महीना, यानी कि इस महीने से पिछला महीना। और वहाँ की जो नवविवाहिता युवतियाँ या लड़कियाँ या बेटियाँ हैं, वो आज के दिन अपना वो लहरा महीना काट के ससुराल वापस जाती हैं। तो कहते हैं ना कि हिमाचल में चले जाइए या पंजाब में चले जाइए, रीति रिवाज थोड़े थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी संस्कृति के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। चाहे हम कहीं भी रह लें, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है, और हमें भी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के साथ जुड़े रहना चाहिए। श्रोताओं, ये जो रीति रिवाज हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने चलाए हैं, कुछ ना कुछ सोच कर चलाए हैं, और इन्हें आगे हम भी इसी तरह से चला रहे हैं, और चलाना भी चाहिए। साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम में आज नागपंचमी के बारे में भी आपके साथ बात करेंगे, लेकिन पहले फिर से सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। तो लीजिए, घायल फिल्म का ये गीत आप तक पहुंचा रहे हैं श्रोताओं, अमित कुमार और एस जानकी की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस समय आप सभी सुन रहे हैं और आप सभी समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम में इस गीत के बाद श्रोताओं, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से अंतराल के बाद हम वापस फिर से लौटेंगे और जुड़ेंगे कार्यक्रम के साथ। तो आप सब भी यूं ही जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। आप सभी कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके साथ बातचीत करते हैं खास और साथ ही आप तक पहुंचाते हैं जानकारियां भी। तो चलिए, काफ़ी समय हो गया जानकारी की और हम नहीं बढ़े हैं, और अब हम बढ़ेंगे जानकारी के और आपके साथ साझा करेंगे ये जानकारी। सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 1 250 kVA रक्कड़ बल्ला, 2 250 kVA दरूनी माता, 300 kVA फतेहपुर और 4 250 kVA सिद्धबाड़ी, 4 आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र रक्कड़ दरूनी माता मंदिर के आसपास, परमार हाउस के पास, स्पीति हॉस्टल, गुरुद्वारा रोड, इन सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूर्णतः बाधित रहेगी और मौसम खराब होने पर या अन्य कोई भी आकस्मिक आपदा में ये कार्य जो है स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सर्वसाधारण जनता से सहयोग की अपील की जाती है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और जानकारी के बाद बातों की श्रृंखला को भी हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले सुनेंगे एक और प्यारा सा गीत। श्रोताओं, लीजिए लता मंगेशकर और ईला अरुण की आवाज़ों में सुनिए लम्हे फिल्म का ये गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं अपनी रेडियो दो सुषमा के साथ। साथी श्रोताओं, देखिए प्यारा सा गीत हमने सुना, मेघा रे मेघा। तो आजकल जो है वो मेघ बरस रहे हैं क्योंकि उनका समय है बरसने का। लेकिन श्रोताओं, साथ ही आपको बात बता दें कि आज जो संक्रांत हमने मनाई है, इसमें ऐसा माना जाता है कि इस संक्रांत से पिछले 8 दिन जो है वो कुरला बैठता है और अब आज से कुरली बैठेगी। तो श्रोताओं, आप में से बहुत सारे लोग शायद इस कहानी को नहीं जानते होंगे, लेकिन हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जो ये कुरला और कुरली है, ये बैठते हैं 16 दिन के लिए और इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होती है। खैर, जब कहते हैं कि इस संक्रांत से पहले कुरला बैठता है 8 दिन और उसमें इतनी बारिश नहीं होती, लेकिन जब कुरली बैठती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना होती है। तो श्रोताओं, एक छोटी सी कहानी आपके साथ जरूर साझा करना चाहेंगे कि ये क्या कहानी है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने जो है वो आज तक उसे सुनाते हैं और बताते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि इस कथा में कितनी सच्चाई है, लेकिन जो बात हम आज तक सुनते आए हैं वो कहानी आपके साथ भी साझा करेंगे। तो श्रोताओं, कहते हैं कि कुरला कुरली जिसे हम कहते हैं, उसे पंखेरू और पंखेरी भी कहते हैं, वो एक वृक्ष पर बैठते हैं 8 दिन के लिए, जो बैठ 16 दिन के लिए लोग बैठते हैं। और इन्हें सिर्फ रोज़ाना एक नदी में डुबकी लगानी होती है सिर्फ 3 बार, और उस 3 बार की डुबकी में अगर कोई भी, अगर कुरली ने डुबकी लगाई है तो पहली बारी में अगर वो खाली आती है तो वो खाली आएगी, दूसरी बार भी डुबकी लगाएगी, तीसरी बार भी लगाएगी। अगर उनके चोंच में कोई मछली आ जाती है तो वो खा लेते हैं, अगर नहीं भी मिलेगी तो वो भूखे रहेंगे, लेकिन तीसरी के बाद चौथी जो डुबकी है वो पानी में वो नहीं लगाते हैं। इस तरह से श्रोताओं, बारी बारी जो है ये बैठते हैं और बारी बारी ये डुबकी लगाते हैं, लेकिन दिन में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार ये डुबकी लगाते हैं, और 3 बार में अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो वो भूखे रहते हैं, ऐसी मान्यता है। और कहा जाता है कि जयसिंहपुर में अभी भी वो एक तालाब है और वो पेड़ भी है जहाँ पर ये पंखेरू और पंखेरी बैठते हैं। और श्रोताओं, अभी भी देखा जाता है कई बार उस पेड़ के तने पर, नीचे ज़मीन पर मछली के कुछ कांटे देखे जाते हैं। तो इस कहानी को हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो है वो मानते आए हैं और हम भी उनसे सुनते आए हैं कि कुरला कुरली जिन्हें कि एक पंछी होते हैं, पंखेरू और पंखेरी कहा जाता है, वो बैठते हैं। तो आज हमारी जो कुरली है, जो पंखेरी है, वो बैठ गई है और अब आने वाले 8 दिनों में ये पंखेरी, ये जो कुरली है, ये क्या करती है, कितनी बारिश लाती है, वो देखने वाली बात है। लेकिन जब बहुत तेज़ बारिश होती है श्रोताओं, तो हमें डर भी लगता है क्योंकि बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारी जो प्राकृतिक आपदा है वो भी आती हैं, उन्हें भी हमें झेलना पड़ता है। लेकिन खैर, मौसम के साथ तो कौन ही लड़ सकता है। लेकिन एक छोटी सी कहानी थी जो आपके साथ साझा करनी थी, वो हमने की है। हम ये नहीं कहते कि ये कहानी सही है, सच है या गलत है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन एक कथा थी जो मैंने आपको इस कार्यक्रम

के माध्यम से सुनाई है। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेते हैं एक और प्यारा सा गीत, नाग पंचमी। इस फिल्म का गीत श्रोताओं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं 91.2 MHz पर आप सभी इस समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस प्यारे से गीत के बाद कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे। श्रोताओं बहुत सारे श्रोता हमारे जो हैं वो हमारे

लाइव फेसबुक लाइव पेज के साथ भी जुड़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल हम लोग आपके समक्ष जो है वो रेडियो गुंजन धर्मशाला के लाइव पेज पर भी आते हैं और बहुत सारे श्रोता हमें जवाब भी देते हैं, लाइक भी करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। और आप सभी का सहयोग, आप सभी का प्यार यूँ ही हमें मिलता रहे तो अच्छा है। तो एक हमारे श्रोता हैं इंदु जी, उन्होंने गुड इवनिंग कहा है, उन्हें गुड इवनिंग, नमस्कार। और बाकी जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और अगर आपको कहीं कमी लगती है तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ेंगे और साथ ही हम बात करेंगे नागपंचमी की। श्रोताओं, सावन का ये महीना है और सावन के इस महीने में शिव भोले भंडारी के हम लोग बहुत ही पूजा अर्चना करते हैं। हर मंदिर में हम रौनके देख सकते हैं और हम अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो लेकर मंदिरों में जाते भी हैं। तो नागपंचमी एक खास दिन है और दूसरी बात ये कि आज सोमवार भी है और नागपंचमी आज के दिन पड़ी है और तीसरा सावन का ये महीना भी चला हुआ है। तो नागपंचमी के इस पर्व पर भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम भोलेनाथ से ही कामना करेंगे कि आप सभी की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो और आप सभी कुशल जो है वो रहें। तो श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारा शिव भजन बोल सकते हैं आप तक पहुंचाते हैं भोले की बीट से, हंसराज रघुवंशी की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस समय आपसे आप सभी ने सुना हंसराज रघुवंशी की आवाज़ में भोले भोले ये प्यारा सा भजन। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे इस गीत से पहले नाग पंचमी की। श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति में नाग केवल एक जीव नहीं बल्कि प्रकृति और जीवन चक्र के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखे गए हैं। भगवान शिव के गले में नाग का होना भी नागों को धार्मिक परंपरा में विशेष स्थान देता है। नाग पंचमी हमें ये याद दिलाती है कि धरती पर रहने वाला हर जीव का अपना महत्व। साथ ही श्रोताओं, नागपंचमी के दिन कई घरों में नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या मिट्टी से बने नाग का पूजन भी किया जाता है। फूल, अक्षत, हल्दी, चंदन और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर नाग देवता की कथा भी सुनाई जाती है और परिवार की सुख शांति की कामना भी की जाती है। तो श्रोताओं, नागपंचमी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा भी हम आपको आज कार्यक्रम में ज़रूर सुनाएंगे। तो कथा को सुनने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। और श्रोताओं, कुछ ही समय के बाद यानी कि ठीक 7 बजे समाचारों का समय हो जाएगा और समाचारों को सुनना भी ज़रूरी है क्योंकि हमें अपने देश प्रदेश की जो खबरें हैं वो वहीं से मिलती हैं। तो श्रोताओं, नागपंचमी की हम बात कर रहे हैं और नागपंचमी के दिन कहा जाता है कि लोग मंदिरों में जाते हैं और दूध जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। लेकिन श्रोताओं, कहीं कहीं सांपों को दूध पिलाने की परंपरा के बारे में भी धार्मिक मान्यताएं ज़रूर मिलती हैं, लेकिन जीवित सांपों को दूध पिलाना उनके लिए उचित नहीं माना जाता। इसलिए पूजा के लिए नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या मिट्टी के नाग का प्रयोग करना बेहतर होता है। हमारे खेतों और प्राकृतिक परिस्थितिक तंत्र में सांपों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे चूहों जैसी कई जीवों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए नागपंचमी को केवल धार्मिक पर्व के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी के पर्व के रूप में भी देखा जा सकता है। तो श्रोताओं, नागपंचमी पर एक संकल्प लेना बनता है। नाग देवता के प्रति श्रद्धा भी रहे और प्रकृति के प्रति संवेदना भी, अंधविश्वास नहीं आस्था के साथ समझदारी भी और हर जीव के लिए मन में करुणा भी। तो श्रोताओं, नागपंचमी के इस अवसर पर हम आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं और आप पर प्रभु का और शिव भोले भंडारी का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं समाचार।
1: आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया और उसके हमलों की साजिश नाकाम की। सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में समन्वित अभियान चलाकर कार्रवाई की, जो आतंकवाद के प्रति भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान श्री जोशी ने स्थापित परीक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोपनीय संचालन व्यवस्था में व्यापक सुधार करने को कहा है। उन्होंने सुरक्षित कक्षों और एयर गैप्ड सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने संबंधी प्रोटोकॉल में भी व्यापक सुधार युद्ध स्तर पर लागू करने को कहा। श्री जोशी ने एजेंसी को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का व्यापक ऑडिट कराने और की गई सुधारात्मक कार्रवाई पर रिपोर्ट देने को भी कहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत 31 और आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में करीब 7,877 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इससे 9,500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। ये आवेदन 10 राज्यों से मिले हैं, जिनमें तमिलनाडु से 7, महाराष्ट्र और हरियाणा से 6-6 आवेदन शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आवेदकों को मंजूरी पत्र सौंपे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज पार्टी के नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की। श्री नवीन ने वसुंधरा राजे सिंधिया, तीरथ सिंह रावत, राम माधव, बैजयंत जय पांडा, सरदार मनप्रीत सिंह बादल और रेखा वर्मा सहित 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता पीयूष गोयल को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री बीएल संतोष को संगठनात्मक राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। श्री नवीन ने विनोद तावर और देव सहित 8 पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय महासचिव भी नियुक्त किया है। पार्टी ने अपने विभिन्न मोर्चों के नए प्रमुखों के नाम भी घोषित कर दिए हैं, जिनमें डॉक्टर हेमांग जोशी युवा मोर्चा अध्यक्ष, रूप कुमार चौधरी महिला मोर्चा अध्यक्ष और बंसीलाल गुर्जर किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि वे पार्टी को मजबूत करने और जन सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। श्री नवीन ने विश्वास व्यक्त किया कि समर्पित कार्यकर्ता की भावना से परिपूर्ण प्रत्येक सदस्य संगठन को और मजबूत करेगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वे विकसित भारत के संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर जिले के रामनगर वन क्षेत्र में 2 अज्ञात व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद व्यापक संयुक्त घेराबंदी और तलाश अभियान शुरू किया। क्षेत्र में कई स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में एक इस्पात निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में 3 मजदूर घायल हो गए। ये विस्फोट आज सुबह एक निजी विनिर्माण कंपनी में उत्पादन के दौरान हुआ। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। यूपीआई से संचालित पोस्ट ट्रांसफर आधारित कतर से भारत में धन भेजने की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के माध्यम से कतर में भारतीय समुदाय के लोगों को कतर पोस्ट आउटलेट्स के जरिए भारत में यूपीआई सक्षम बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की सुविधा मिल गई है। ईरान ने कहा है कि उसने ओमान के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही को व्यवस्थित करने की योजना पर सहमति बना ली है। दोनों देश अब इससे संबंधित अंतिम संयुक्त बयान की तैयारी कर रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को वाणिज्यिक जहाजों के लिए पूरी तरह से फिर से खोलना अमरीका की प्रमुख मांग रही है। गोल में भारत के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में तीसरे दिन श्रीलंका की पहली पारी 284 रन पर ऑल आउट हो गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। श्रीलंका भारत से 178 रन पीछे है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो गई है। पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु आयरलैंड की सोफिया नोबल को हराकर दूसरे दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समाचारों के बाद एक बार फिर से श्रोताओं आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। श्रोताओं एक बार फिर से सबको, जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को सुषमा की प्यार भरी राम राम नमस्कार और गुड इवनिंग। आप में से बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो हमारे साथ 6 बजे से जुड़े होंगे, लेकिन कुछ एक श्रोता किसी कारणवश थोड़ी सी देर के बाद भी हमारे साथ जुड़े होंगे, तो उन्हें भी बता दें कि आप सभी समय जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपकी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। तो श्रोताओं समाचारों के बाद और इन बातों के बाद एक बार फिर से कार्यक्रम को लेकर चलते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये प्यारा सा गीत, ये रात फिर ना आएगी। इस फिल्म का गीत आशा भोसले और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, हजूर आला ये गीत आपको ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि अपने समय की बहुत ही मशहूर फिल्म है और इसके गीत भी बहुत प्यारे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में इस गीत के बाद अब आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था कि नाग पंचमी पर आज आपको कहानी ज़रूर सुनाई जाएगी कि नाग पंचमी जो है वो किस लिए मनाई जाती है, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो श्रोताओं, कहानी के अनुसार राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हुई थी। अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर उनके पुत्र जनमेजय ने सभी नागों को समाप्त करने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ जो था वो शुरू किया था। यज्ञ की शक्ति से अनेक नाग जो हैं वो अग्नि की ओर खींचे चले आ रहे थे। तब आस्तिक ऋषि ने जनमेजय से यज्ञ रोकने का अनुरोध किया। उनकी बात मानकर जनमेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया और नागों का विनाश होने से बच गया। इसी घटना की स्मृति से जुड़ी लोक मान्यता में नागों के प्रति सम्मान, संरक्षण और अहिंसा का संदेश मिलता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उनसे परिवार की सुख शांति तथा खेत खलिहान की रक्षा की प्रार्थना भी की जाती है। तो श्रोताओं, ये थी छोटी सी कहानी नाग पंचमी पर, और इस कहानी के बाद अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम का अगला गीत, दूध का कर्ज। इस फिल्म का गीत अनुराधा पोडवाल की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट्स पर।
1: तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे गुरु भैरवनाथ को हुआ था।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ, और कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाया ये गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और आप तक पहुँचाएँगे जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की 25 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का मंडी के पड्डल मैदान से शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने HRTC के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के लिए नई 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की है। नई इलेक्ट्रिक बसें वर्तमान में शिमला, नाहन, नालागढ़, ऊना, हरोली, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पालमपुर, धर्मशाला तथा नगरोटा में संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू, मंडी और सुंदरनगर में भी आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जा चुकी है तथा इन क्षेत्रों में नई इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन भी आज से शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों की निर्धारित ड्राइविंग रेंज 80% स्टेट ऑफ चार्ज पर लगभग 180 किलोमीटर है। परिचालक के दौरान इन बसों का प्रदर्शन अत्यंत उत्साहजनक रहा है। साथ ही श्रोताओं, उन्होंने कहा कि शिमला दृढ़ चंडीगढ़ मार्ग पर इलेक्ट्रिक बस द्वारा एक बार चार्ज करने पर लगभग 270 किलोमीटर की दूरी सफलतापूर्वक तय की जा रही है। ये प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी भूभाग में लंबी दूरी के अंतर शहरी मार्गों पर इन बसों की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है। साथ ही श्रोताओं, मुख्यमंत्री ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का ये विस्तार प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने तथा स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के निरंतर सहयोग तथा चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के साथ HRTC राज्य में आधुनिक विशिष्ट ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो श्रोताओं, ये तो थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाएगी रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से। आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत। लीजिए श्रोताओं, आयाराना फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आप सभी के रेडियो सेट्स पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत, और इस गीत के बाद थोड़ी सी बात हम करेंगे मौसम को लेकर श्रोताओं। और आजकल जो बारिश है वो कई बार बहुत तेज़ हो रही है, और पिछले एक दो दिनों की अगर बात करें तो बहुत तेज़ बारिश हुई है, और इसकी वजह से बहुत जगह नुकसान भी बहुत हुए हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि धर्मशाला में जो लोग रहते हैं वो जानते होंगे, धर्मशाला से खनियारा रोड जो है वो कुछ हद तक जो है वो बहुत तेज़ भारी बारिश होने की वजह से आधा जो है वो बिल्कुल टूट गया है, और अब उसमें उस पर से बहुत मुश्किल से ही कोई एक गाड़ी जा पा रही है, लेकिन वो अपने रिस्क पर वो जा रहे हैं। श्रोताओं, ऐसे में हम यही कहेंगे जहाँ पर भी खतरा लगता है वहाँ जाने की कोशिश ना करें, और जिनके घर ऐसे नालों के पास है या ऐसी जगह है वो अपने घरों को अगर छोड़ दें तो बेहतर है। कहीं और जाकर आप अपने कहीं रिश्तेदारों के यहाँ रह सकते हैं, लेकिन उन घरों को छोड़ दें जो खतरे के निशान में है श्रोताओं, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। साथ ही श्रोताओं, उसके साथ ही बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड जो है वो भी देखने में आया है। खनियारा रोड के ऊपरली साइड जो है, जो खड़ा डंडा मार्ग है उस तरफ, और वहाँ पर भी कई घर जो है वो खतरे में हैं। तो ऐसे में श्रोताओं, हम आपसे यही आग्रह करेंगे जहाँ भी आपको लगता है कि खतरा है वहाँ थोड़ा सा सुरक्षित रहें, और ख़ास करके जब बारिश बहुत तेज़ रात के समय होती है तो ऐसी घटनाएँ जब होती हैं तो पता भी नहीं चलता, और ऐसे में ऐसी घटनाओं से हम तो डरते ही हैं लेकिन छोटे बच्चे भी जो हैं वो डर जाते हैं। डरना भी स्वाभाविक है, लेकिन अपना ख्याल हमें खुद रखना है श्रोताओं। तो बरसात के इस मौसम में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, उनसे सावधान रहें, अपनी सुरक्षा ज़रूर करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत बहुत ही खूबसूरत आप सभी के रेडियो सेट पर भेज रहे हैं। लीजिए, इंजॉय कीजिए इस प्यारे से ट्रैक को।
1: कुछ यादें

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आज हम बात करेंगे एक अभिनेता सचिन पिलंगावकर की। जी श्रोताओं, बिल्कुल आज के ही दिन यानी कि 17 अगस्त 1957 में उनका जन्म हुआ, जिन्हें केवल सचिन के नाम से भी जाना जाता है। श्रोताओं, और एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और गायक भी हैं। उन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और मराठी सिनेमा में काम किया है तथा बचपन में एक बाल कलाकार के रूप में अपने अभिनय सफ़र की शुरुआत की थी। श्रोताओं, उनके जन्म की बात जैसे हमने की कि 17 अगस्त 1957 को बॉम्बे में हुआ, और परिवार में उनके पिता शरद पिलंगावकर एक फिल्म निर्माता थे। उन्होंने वर्ष 1985 में अभिनेत्री सुप्रिया पिलंगावकर से विवाह किया और उनकी एक बेटी श्रेया है जो एक जानी मानी अभिनेत्री भी हैं। श्रोताओं, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने मराठी फिल्म हा माझा मार्ग एकला में बतौर बाल कलाकार शुरुआत की और लगभग 65 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम भी किया। मुख्य भूमिकाओं की अगर बात करें श्रोताओं, तो व्यस्क अभिनेता के रूप में उन्होंने गीत गाता चल, बालिका बधु, शोले, नदिया के पार जैसी लोकप्रिय हिंदी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। उन्होंने कई सफल मराठी फिल्मों का निर्देशन भी किया, जिनमें नवरी मिले नवर्याला और ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म आशी ही बनवा बनवी शामिल है। साथ ही श्रोताओं, अभिनय और फिल्म निर्माता के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उन्हें अपने लंबे कला करियर के लिए कई महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं। तो श्रोताओं, अब अपनी बातों को यहीं पर हम देंगे विराम और आपको लिए चलेंगे कार्यक्रम के अगले गीत की ओर। तो लीजिए, शेषनाग फिल्म का ये गीत आप तक भेज रहे हैं श्रोताओं, अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं 91.2 MHz पर आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कम करेगी सरकार, हर साल होगी 200 करोड़ रुपए की बचत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर लगाया गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रदेश के संसाधन खर्च करने का आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा शिक्षा के साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के प्रकोष्ठों को बताया संगठन और समाज के बीच सेतु। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, 5 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार IAS, IPS और IFS अधिकारियों की संख्या को कम करने जा रही है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अधिकारियों की संख्या में प्रस्तावित इस कटौती से प्रदेश को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए की बचत होगी।
2: IAS के हम 153 में से 130 पद करने जा रहे हैं, IFS के हम 118 में से 83 पद करने जा रहे हैं, IPS के 96 में से और पद कम करने जा रहे हैं। अधिकारियों की ज्यादा फौज नहीं चाहिए। मैं सबसे ज्यादा जो अप्रूवल है वो दिल्ली जाने के लिए दे रहा हूँ कि जो अधिकारी दिल्ली जाना चाहता है, पहले इनकी फाइलें रोकी जाती थी, मैं इनकी फाइलें तुरंत प्रभाव से अप्रूव करता हूँ और जब रिलीव होना होता है तुरंत प्रभाव से कह रहा हूँ, क्योंकि इतने अधिकारियों की जरूरत नहीं है। एक अधिकारी पर हम अगर ये हम सारे कहेंगे तो 200 करोड़ रुपया कम खर्चा आएगा, जो कि लोगों को हम सेवा कर सकते।
1: कर्मचारियों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने एक भी दिन कर्मचारियों की सैलरी व पेंशन नहीं रुकने दी, यही आत्मनिर्भर हिमाचल है जिसकी सरकार बात करती है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में राज्य पथ परिवहन निगम को आत्मनिर्भर बनाने का है। उन्होंने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए 25 नई इलेक्ट्रिक बसें रवाना करने के मौके पर कहा कि निगम में अधिकारियों की गाड़ियों की संख्या भी घटाई जाएगी।
2: अच्छी माइलेज आ रही है, बहुत अच्छी कवरेज आ रही है और हमारे यहाँ चंडीगढ़ के रूट जो पर किलोमीटर के हिसाब से थोड़े कई बार नुकसान हो जाता था वो हमारे एवरेज में ठीक आ गए। तो निश्चित रूप से नई व्यवस्था के अनुरूप ये आगे बढ़ेंगे और HRTC को हम सस्टेन करना चाहते हैं, उसको हम अच्छा बनाना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं है, 5 साल में HRTC प्रॉफिट भी कमाने लगेगा।
1: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के चिकित्सा उपकरणों और मशीनरी की खरीद व स्थापना की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए ताकि उन्नत चिकित्सा सुविधाओं का लाभ लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रदेश की ऊर्जा और संसाधनों को खर्च कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने मंडी में आज कहा कि द्रंग विधानसभा क्षेत्र के दियोरी में स्कूल भवन लगभग 9 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी इस भवन के उद्घाटन के लिए समय नहीं दे रही है। ऐसे में इस भवन पर ताले लटके हुए हैं और बच्चों को किराए के मकान में पढ़ाई करनी पड़ रही है। उन्होंने इस भवन को महीनों तक बंद रखने को विद्यार्थियों के साथ अन्याय करार दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर खेल सुविधाओं से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अग्निहोत्री आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय महाविद्यालय खड में निर्माणाधीन इंडोर

0: स्टेडियम के निरीक्षण के मौके पर बोल रहे थे। उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे संवाद कार्यक्रमों में प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करें ताकि पात्र लोग इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। पठानिया आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रैत में बीपीएल परिवारों के साथ संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। राजधानी शिमला के खलीनी क्षेत्र में एक कार और टैंकर की आमने सामने टक्कर हो जाने से दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार के रूप में हुई है, जो पुलिस लाइन कैथू में तैनात थे। घटना के समय दोनों जवान ड्यूटी से संबंधित कार्य पर जा रहे थे। दोनों पुलिस कर्मियों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रदेश पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस अधिकारियों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि पार्टी का प्रत्येक प्रकोष्ठ संगठन और समाज के बीच मजबूत सेतु का काम करता है। राजीव बिंदल आज शिमला में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाला दल नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन समाज के बीच रहकर कार्य करने वाला संगठन है। राजीव बिंदल ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुक्खू सरकार ने कोई पेपर ही नहीं करवाए, ऐसे में पेपर लीक होने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस नेता वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, उनसे भलाई की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
1: माननीय श्री राहुल गांधी जी वंदे मातरम का अपमान कर सकते हैं, तो उनसे बाकी किस प्रकार की उम्मीद की जा। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, उसके लिए निंदा शब्द बहुत कम पड़ता। जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, उसके बाद शिक्षा के ऊपर बोलना, ये उन्हें शोभा नहीं।
0: धर्मशाला में स्थित जिला कारागार में कैदियों और जेल वार्डर के बीच हुई हिंसक झड़प में 11 वार्डर और 4 कैदी घायल हो गए हैं। रविवार को हुई इस घटना में 2 वार्डर और 1 कैदी को गंभीर चोटें आई हैं। इन्हें उपचार के लिए टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा ने कहा कि ये घटना उस समय हुई जब जेल में कैदियों का मेडिकल चेकअप चल रहा था।
2: कारागार धर्मशाला में विचाराधीन कैदी और जेल वार्डर के बीच में मेडिकल चेकअप को लेकर कुछ कहासुनी और बहसबाजी हो गई थी, जो बहसबाजी बाद में एक स्कफल और लड़ाई झगड़े के तौर पर परिवर्तित होगी। इसमें एक कैदी द्वारा खिड़की तोड़कर कांच के द्वारा अपने आप को भी कुछ इंजरीज इन्फ्लिक्ट किए हैं और एक जेल वार्डर को भी पेट में कांच घोंपने पर उससे गंभीर चोटें आई हैं। इस स्कफल में टोटल 11 जेल वार्डर को चोटें आई हैं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे और जो भी लड़ाई झगड़ा और इस तरह का स्कफल हुआ उसमें प्रिजनर एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत मामला सदर थाना धर्मशाला में दर्ज किया गया है और दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर हुई है।
0: लोक जनशक्ति पार्टी के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान ने कहा है कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में तीसरा राजनीतिक विकल्प बनेगी। इसके लिए संगठन के विस्तार के साथ साथ युवाओं को प्रमुखता से पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। नितिन चौहान ने आज नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध करवाने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
3: हर गांव, हर वार्ड, हर शहर में यहां से जाएंगे और हम अपना संगठन दोबारा से मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है। लोग आज के टाइम में सब परेशान बहुत है, क्योंकि कोई भी रोजगार के बारे में सोच ही नहीं रहा है, युवाओं के बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो हम उन युवाओं के साथ लेकर चलेंगे और उनके लिए चिराग पासवान जी हमारे, उन्होंने बोला भी है कि मैं युवाओं के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, उनको साथ लेकर चलेगी।
0: प्रदेश में मानसून की वर्षा का दौर लगातार जारी है और राज्य के अधिकांश स्थानों पर आज मानसून की व्यापक से भारी वर्षा हो रही है। राजधानी शिमला में भी आज सायं से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी वर्षा के कारण किन्नर कैलाश यात्रा तांगलिंग के रास्ते बंद हो गई है, जबकि पूर्वनी के रास्ते यात्रा अभी भी जारी है। भारी वर्षा के चलते प्रदेश में 87 सड़कें और 8 पेयजल योजनाएं अवरुद्ध हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी शिवालिक जन कल्याण संगठन ने नाहन शहर के लोगों को आ रही विभिन्न समस्याओं को लेकर आज उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मुलाकात कर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष योगेश ठाकुर ने उपायुक्त से चौगान मैदान को 2400 घंटे खुला रखने की मांग की ताकि सेना व पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को आसानी हो सके। ज्ञापन में मेडिकल कॉलेज नाहन में स्टाफ की कमी को दूर करने और नाहन शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान की भी मांग की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों की संख्या कम करेगी सरकार, हर साल होगी 200 करोड़ रुपए की बचत। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर लगाया गांधी परिवार को खुश करने के लिए प्रदेश के संसाधन खर्च करने का आरोप। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, शिक्षा के साथ खेल और अन्य गतिविधियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा रही सरकार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी के प्रकोष्ठों को बताया संगठन और समाज के बीच सेतु। और प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय, 5 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: 91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं, समाचारों के बाद अब कार्यक्रम में हमारा इस कार्यक्रम का सफ़र भी अब समाप्ति की ओर है और चलते चलते अब आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम का आखिरी गीत गैम्बलर फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए इस गीत को और इस गीत के साथ ही अपनी डेरी दोस्त सुषमा को भी दीजिए जाने की इजाज़त। फिर किसी दिन किसी और कार्यक्रम में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
4: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देना।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे। दीवार पे लगाने वाला लाए हैं टीवी।
9: टीवी देखने बुलाएंगे?
10: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
11: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
12: क्यों?
11: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
17: मैं तो बुरी।

तुम्हारे गम की डली उठाकर जबां पे रख ली है, देखो मैंने ये कतरा कतरा पिघल रही है, मैं कतरा कतरा ही जी रहा हूं।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे आज का ये खास न्यूज बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पे। पेंशनरों को 15 से 35% चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को इसी माह 20,000 एरियर। विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से होगा शुरू। 900 से अधिक सवाल पहुंचे धर्मशाला में, स्थापित होगा प्रदेश का पहला रिमोट सेंसिंग केंद्र। पटोला मैदान बनेगा फुटबॉल स्टेडियम। अब समाचार विस्तार से।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को विकास की सौगातें देते हुए विभिन्न परियोजनाओं के लिए आज 27 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की। उन्होंने संयुक्त कार्यालय भवन नेरवा जिला शिमला के लिए 2 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन चौपाल के लिए 3 करोड़, संयुक्त कार्यालय भवन कुपवी के लिए 2 करोड़, दुग्ध अभिषेकन संयंत्र नेरवा के लिए 2 करोड़, नेरवा बाईपास के लिए 4 करोड़, लखावटी पुल के लिए 12 करोड़ तथा छवाला चौपाल जलापूर्ति योजना के लिए 2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता रजनीश किमटा, एचपीएमसी के उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा तथा चौपाल नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष चंद्र मोहन ने चौपाल क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं को समुचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास को गति मिलेगी, लोग इन परियोजनाओं का लाभ उठाकर धन एवं समय में बचत कर पाएंगे तथा उनका रहन सहन सुगम होगा। 2. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ, हरित एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत आज वर्चुअल माध्यम से मंडी जिले के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की 25 नई टाइप 1 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का मंडी के पड्डल मैदान से शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने HRTC के इलेक्ट्रिक बस बेड़े के विस्तार के लिए नई 297 टाइप 1 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की है। नई इलेक्ट्रिक बसें वर्तमान में शिमला, नाहन, नालागढ़, ऊना, हरोली, बिलासपुर, देहरा, हमीरपुर, पलमपुर, धर्मशाला तथा नगरोटा में संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त कुल्लू, मंडी और सुंदरनगर में भी आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना विकसित की जा चुकी है तथा इन क्षेत्रों में नई इलेक्ट्रिक बस सेवाओं का संचालन भी शुरू किया गया है। श्री सुक्खू ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से HRTC की परिचालन लागत में भी महत्वपूर्ण कमी आ रही है। पारंपरिक डीजल बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से ऊर्जा लागत में लगभग 12-13 रुपए प्रति किलोमीटर की बचत हो रही है। इससे निगम के ईंधन एवं परिचालन व्यय में कमी आने के साथ साथ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की समग्र दक्षता में भी सुधार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े का ये विस्तार प्रदेश में कार्बन उत्सर्जन कम करने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने तथा स्वच्छ एवं हरित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार के निरंतर सहयोग तथा चार्जिंग अवसंरचना के विस्तार के साथ HRTC राज्य में आधुनिक, विश्वसनीय, ऊर्जा कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। 3. सर्वसाधारण व जनता को सूचित किया जाता है कि दिनांक 19 अगस्त 2026 को सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक 1250 KVA रक्कड़ बल्ला 2250 KVA दरुनी माता 3100 KVA फतेहपुर -44250 KVA सिद्धबड़ी 4 आदि ट्रांसफार्मरों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों रक्कड़ दरुनी माता मंदिर के आसपास परमार हाउस के पास पीती हॉस्टल गुरुद्वारा रोड आदि क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पुनर्तः बाधित रहेगी। मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित या आंशिक रूप से किया जा सकता है। ये कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। 4. वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कर्मियों और पारिवारिक पेंशनरों को नया वेतनमान लागू होने के बाद संशोधित पेंशन के एरियर का अतिरिक्त 35% इसी माह भुगतान किया जाएगा। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी 15% एरियर मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इसी माह संशोधित वेतनमान के एरियर के रूप में अतिरिक्त 20,000 रुपये सैलरी के साथ मिलेंगे। इस पर सरकार 281 करोड़ रुपये खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरे जाएंगे। सीएम ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए भी नीति बनाने की घोषणा की। हिमाचल प्रदेश में 26,724 आउटसोर्स कर्मचारी हैं। अगले शैक्षणिक सत्र से प्रदेश में 100 और CBSE स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में 31 मार्च 2027 तक कोई भी चिकित्सक सेवानिवृत्त नहीं होगा। 5. हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू होगा और 3 सितंबर तक चलेगा। 14वीं विधानसभा का ये 11वां सत्र होगा। सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा सचिवालय में अब तक विधायकों के 900 से अधिक प्रश्न पहुंच चुके हैं। विधायक 18 अगस्त तक अपने प्रश्न भेज सकेंगे। प्राप्त प्रश्नों को संबंधित विभागों को भेजकर उनके जवाब तैयार करवाए जा रहे हैं। मंत्री इन प्रश्नों पर प्रश्नकाल में जवाब देंगे। प्रश्नों में भाजपा और कांग्रेस दोनों विधायकों के सवाल शामिल हैं। 6. राज्य का पहला रिमोट सेंसिंग एवं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम केंद्र धर्मशाला में करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो.
चंद्र कुमार ने धर्मशाला के पुलिस मैदान में शनिवार को आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित होने वाले इस हाईटेक केंद्र के जरिए प्रदेश में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। केंद्र के माध्यम से मौसम, भूमि, फसल और प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित डिजिटल डेटा तैयार किया जाएगा। ये डेटा विभिन्न सरकारी विभागों को उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनेगी। साथ महान स्वतंत्रता सेनानी कैप्टन राम सिंह ठाकुर की स्मृति में खनियारा के पटोला मैदान में आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शनिवार को समापन हुआ। रोमांचक फाइनल मुकाबले में इंदुनाग फुटबॉल अकादमी खनियारा ने शाहपुर की टीम को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। समापन समारोह में धर्मशाला के विधायक एवं पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विजेता एवं उपविजेता टीमों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। विजेता टीम को 11,000 रूपए ट्रॉफी तथा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह, जबकि उपविजेता टीम को 9,000 रूपए उपविजेता ट्रॉफी तथा सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इस अवसर पर विधायक सुधीर शर्मा ने नगर निगम धर्मशाला के वार्ड नंबर 15 के पार्षद प्रवीण प्रकाश के आग्रह पर क्षेत्रवासियों और खिलाड़ियों के हित में 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने पटोला मैदान को फुटबॉल स्टेडियम के रूप में विकसित करने, दर्शकों के बैठने के लिए मैदान में कैनोपी, पूर्व निर्मित ढांचा स्थापित करने तथा टूर्नामेंट आयोजन समिति को 50,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। पटोला मैदान को खेल सुविधाओं से विकसित किए जाने से खनियारा और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिलेगा तथा फुटबॉल को नई पहचान और नई ऊंचाइयां हासिल होंगी। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल युवाओं को अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी की रात में चांदी के रंग से चटनी चढ़ा।
4: छताई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं अभी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।
2: नहीं मम्मा, आ गई।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
4: याद है ना, नो शेयरिंग।
5: मामा,
6: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
7: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
8: कहाँ रखेंगे टीवी? अपनी वो कोने वाली मेज पे,
9: दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
10: टीवी देखने बुलाएंगे?
11: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
12: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
11: क्यों?
12: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
13: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
14: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
15: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
16: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
15: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना वीडियो गुंजन धर्मशाला।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: आज स्कूल में क्या सीखा?
2: मछली जल का रानी।
1: जल का नहीं, जल की।
2: जीवन उसकी पानी।
1: उसका।
2: पापा पापा, दूध उबल रही है।
3: उबल रहा है। रहा।
2: चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के रात में चांदी के रूम से चटनी चढ़ाया।
4: छताई।
2: ओहो। दादू, इस पे फूल कब आएगी? कब आएगा?
5: बेटा खाया नहीं, खाई।
2: ओके ओके। मम्मी, लाइट चला गया।
1: चली गई। मैं भी कंप्लेन करती हूँ।
3: अरे ये लाइनमैन कहाँ रह गया?
2: वो तो आ गई।
1: आ गई नहीं, लाइनमैन आ गया।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: भगवान ने आपको पावर दिया है, मान लो बोलने का पावर दिया, आप अच्छा बोल सकते हो या बुरा बोल सकते हो, ये छूट है आपकी। अब आप किसी को निंदा करो, गाली दो, तो ये तुम्हारी गलती है। बोलने का भगवान ने पावर आपको दिया, आप इससे अच्छा भी बोल सकते थे, आप दूसरे की प्रशंसा भी कर सकते थे, आप इससे भगवान नाम कीर्तन भगवत गुण गा सकते थे। तो हमें भगवान को दोष नहीं देते।
4: गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है?
5: मामा, नो शेयरिंग।
4: कोई स्पेशल? हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स, केवाईसी के लिए 10 मिनट दीजिए।
5: कौन था?
4: बैंक, केवाईसी अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और ओटीपी मांगा है।
5: और आप मान गए? जब हम अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेंगे?
4: स्मार्ट गर्ल।
5: याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दें।

0: ओटीपी और पिन नंबर तो कभी नहीं, हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें।
1: याद है ना, नो शेयरिंग।
0: मामा
2: मिश्रा, शुक्ला जी का नया टीवी आ रहा है।
3: अरे वाह शुक्ला जी, तभी इतने चमक रहे हो है।
4: कहाँ रखेंगे टीवी, अपनी वो कोने वाली मेज पे, दीवार पे लगाने वाला लाए है टीवी।
2: टीवी देखने बुलाएंगे?
5: अरे क्यों नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। बुलाओगे ना शुक्ला जी?
6: घर तो यही है, पर ये टीवी आप मैदान में लगा दो।
2: क्यों?
6: शुक्ला जी वहीं तो बैठते लोटा लेके।
7: शुक्ला जी वहाँ जाते हैं तो यहाँ मुंह नहीं छिपाना पड़ता।
8: तरक्की की निशानी सिर्फ टीवी नहीं है जानी, घर में शौचालय नहीं तो सामुदायिक शौचालय का इस्तेमाल करें। शौचालय की आदत पक्की, एक कदम स्वच्छता की ओर।
9: मम्मी हर समय मुझसे लड़ते रहते हैं, आज आप मुझे बताई दो एक अच्छी बीवी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा।
10: जब भी तेरा पति कुछ बोले तो अपना मुंह बंद रख और कान खुले रख, नहीं होगी लड़ाई।
9: मैं तो बुरी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं सुंदरकांड। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।